0: जापान में रोती हुई औरतों को मिलते हैं हैंडसम हग करने वाले बॉयज।
1: वाओ, हमारे यहाँ तो बस बेटा रो मत ये मिलता है, यहाँ मिलते हैं दो करारे थप्पड़। This is Masti Madness on Radio Masti 24/7.
2: Download Radio Masti 24/7 app to call us instantly or email, WhatsApp, text us from the app.
3: It's the best of Bollywood playing on Radio Masti 24/7 live. Have a Masti Bhara weekend.

0: फ्लाइट टिकट खरीदे, दुनिया का चक्कर लगवाएगा कौन? पेपराजी से भी तेज गॉसिप्स आपको लाकर देगा कौन? क्या बात है, आप तो काफी स्मार्ट निकले। तो सुनिए, सालों से एक टक सिंगापुर तक आपको अपडेट रखने वाली आपकी आरजे नुपुर को मस्ती मॉर्निंग्स पर ट्यूसडे, वेंसडे एंड थर्सडे को ओनली ऑन रेडियो मस्ती 24/7 लाइव। ये है मस्ती मॉर्निंग्स मेरी जान।
1: फॉर शो टाइमिंग्स चेक आउट द रेडियो मस्ती ऐप नाउ।
2: Perfect recipe for you to unwind. Musty Weekends only on Radio Musty 24/7 Live.

0: इफ वीकेंड वाज अ गाय,
1: वो आ गया, देखो वो आ गया।
0: इफ वीकेंड वाज अ गर्ल, इफ वीकेंड वाज अ फिल्मी डायलॉग,
2: स्वागत नहीं करोगे आप हमारा।
0: एंड इफ वीकेंड वाज एन ऐप,
3: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव,
4: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव,
5: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव,
6: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव।
0: How to make best of weekends that travel faster than light. Tune into our Musty Weekends on Radio Musty 24/7 Live, the perfect recipe for you to unwind, keeping body entertainment close to you, anywhere, anytime.

0: इफ वीकेंड वाज अ गाय,
1: वो आ गया, देखो वो आ गया।
0: इफ वीकेंड वाज अ गर्ल, इफ वीकेंड वाज अ फिल्मी डायलॉग,
2: स्वागत नहीं करोगे आप हमारा।
0: एंड इफ वीकेंड वाज एन ऐप,
3: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव,
4: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव,
5: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव,
6: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव।
0: How to make best of weekends that travel faster than light. Tune into our Musty Weekends on Radio Musty 24/7 Live, the perfect recipe for you to unwind, keeping body entertainment close to you, anywhere, anytime. Just

0: बड़े बड़े देशों में ऐसी छोटी छोटी बातें होती रहती हैं।
1: लाइफ थोड़ी बोरिंग लग रही है, टेंशन नहीं लेने का। टाइम फॉर योर थेरेपी सेशन, मस्ती का मंत्रा विद आरजे अंतरा, जहां न्यूज है फिल्मी, गॉसिप है स्पाइसी और म्यूजिक है फुल ऑन मस्त। बिकॉज हैप्पीनेस का असली मंत्रा लाती है आरजे अंतरा, हर ट्यूसडे सुबह 7 बजे, ओनली ऑन रेडियो मस्ती 24/7।
2: It's the best of Bollywood playing on Radio Masti 24/7 live. Have a masti bhara weekend.

दिलों में तुम अपनी बेताबियां लेके चल रहे हो, तो जिंदा हो तुम। नजर में ख्वाबों की बिजलियां लेके चल रहे हो, तो जिंदा हो तुम। हवा के झोंकों के जैसे आजाद रहना सीखो, तुम एक दरिया के जैसे लहरों में बहना सीखो। हर एक लम्हे से तुम मिलो खोले अपनी बाहें, हर एक पल एक नया समा देखिए निगाह। जो अपनी आंखों में हैरानियां लेके चल रहे हो, तो जिंदा हो तुम। दिलों में तुम अपनी बेताबियां लेके चल रहे हो।

संदेश चिट्ठिया भी जाई।

0: कभी कभी कि जैसे तुझको बनाया गया मेरे लिए,
1: ये झूठ बोलते हैं मेरे ख्याल कि जैसे

थकन चारों ओर है, चलते जाओ, पहुंचता कौन है, चलते बहुत हैं। नई दुनिया के सुंदर बन के अंदर पुराने वक्त के पौधे बहुत हैं, और उन्हीं पुराने वक्त के पौधों की कहानी सुनाएगा समर, जो आज हमारी राहों में छायादार घने पेड़ बनकर खड़े हैं, जिनके होने से सफर की कड़ी धूप भी छांव सी लगती है। लेजेंड्स अचीवर सीरीज में सुनिए मेरे यानी समर के साथ कुछ महान शख्सियतों की जिंदगी की दास्तान, सिर्फ और सिर्फ रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर। जोश में रहो,

0: समर के साथ सुनते रहिए लेजेंड्स अचीवर्स, किससे उन हस्तियों के जो जीने की प्रेरणा बने, ओनली ऑन रेडियो मस्ती 24/7 लाइव।
1: भारत जिसे कभी सोने की चिड़िया कहा जाता था, ये सब तो हम सब ने हिस्ट्री की बुक में पढ़ा ही है, लेकिन हिस्ट्री का आखिरी लेटर होता है वाई, और वाई से होता है यस्टरडे, जो हर आज का ही एक हिस्सा है, न कि किसी किताब का एक चैप्टर। हर एक गुजरता लम्हा कल की झोली में गिर जाता है, लेकिन वो आने वाले कल को भी मुतासिर करता है। आपको लग रहा होगा कि इतनी सारी बातें मैं क्यों कर रहा हूं यार, हा? आजकल आजकल, लेकिन आप बिल्कुल भी कंफ्यूज ना हो। कल आज और कल, ये आपस में जुड़े हुए हैं। मैं आपको बीते हुए कल में ले जाऊंगा, जहां से आपको आज का पता मिलेगा। हाँ जी, मैं हूं आपके साथ समर, और आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं लेजेंड्स की एकदम नई सीरीज में, अचीवर सीरीज में, जहां मैं आपको मिलवाऊंगा ऐसे कुछ लोगों से जिन्होंने कल कुछ ऐसे काम किए कि आज हम मजबूत हैं। आज की जिस इमारत पर हम खड़े हैं, उनकी नींव उन्हीं लोगों ने रखी थी। उन्होंने अपनी कठिनाइयों से जूझ कर हमारे लिए आसान राहें खोजी। उन्होंने सपने देखे, मगर हमारे लिए, भारत के लिए। ऐसी शख्सियतों को हम करीब से जानेंगे जो आज हमसे दूर चले गए हैं, पर उनके कदमों के निशान आज तक हैं। तो शुरू करते हैं आज का हमारा ये लेजेंड्स, और आज मैं आपको ले चलूंगा उस भारत में जो सोने की चिड़िया था, लेकिन जिसे ब्रिटिश हुकूमत ने बुरी तरह से तबाह कर रखा था। भारत का अपना कुछ था ही नहीं। आजादी के बाद भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू साहब इकोनॉमी को संभालने का बीड़ा उठाए हुए थे। तब आए कुछ ऐसे हीरोज आगे जिन्होंने इस डूबती उबरती इकोनॉमी के शिप को संभाल लिया। आज हर कोई उनका नाम जानता है, पर वो काम जो उन्होंने किया वो कितना बड़ा था, ये मैं आपको बताऊंगा। तो आज आपके लिए एक ऐसे नाम को मैं लेकर आया हूं, और ये हैं धीरू भाई अंबानी। कहानी शुरू से शुरू करने के लिए एक ब्रेक तो चाहिए ना, तो एक ब्रेक ले लेते हैं, म्यूजिक सुनते हैं, उसके बाद लौट कर आइएगा। बातें बहुत सारी हैं।

जो हम है वो हम ही जाने। रंग रूप देखे तो देखे जमाना, हम प्यार के हैं दीवाने। मुझे धन को संसार, हमें मन से है प्यार, धन किसी बात पर हम

0: रेस सिर्फ स्पीड की नहीं दिमाग की भी है।
1: Musty Media Network Singapore presents the Lion City Challenge. Singapore's smartest game show, where knowledge wins. And you too. To participate, text the Lion City Challenge to 9151-8963.
2: राज की बात बताऊं, मेरी आवाज कभी अच्छी थी ही नहीं।
0: अगर हम सब की जानी पहचानी गोल्डन वॉइस के मालिक दी अमीन सयानी जी का ये कहना है, तो सोचिए आप भी अपनी आवाज को सबके दिलों तक कैसे ले जा सकते हैं। द आरजे एकेडमी एट मस्ती मीडिया नेटवर्क इज नाउ ओपन फॉर यू। That too with a hybrid model for your convenience. 12 hours of training per level. Flexible individual focused syllabus offered for 14 years and above. Selected trained voices to get an opportunity to host live on Radio Musti 24/7. Email a brief intro to info@radiomusti.com.sg requesting for application form.
3: Namaste behno aur bhaiyo, main aapka dost Amin Sayani bol raha hoon.
4: कहानियाँ उनकी जिनके होने से हम हैं। सुने लेजेंड्स अचीवर्स में समर की जुबानी रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर।
5: एक बार फिर से आप सभी का इस्तकबाल, स्वागत रेडियो मस्ती 24/7 लाइव है। ये सिंगापुर और साउथ ईस्ट एशिया का एकमात्र लाइव हिंदी रेडियो सिंस 2009 और मैं हूँ समर आपके साथ। लेजेंड्स की बात हो रही आज और लेजेंड्स की इस अचीवर्स सीरीज में हम आपके लिए ले आए हैं कुछ ऐसे लोगों को, ऐसे पर्सन्स को, उनके किस्सों को, उनकी कहानियों को, जो न सिर्फ मॉडर्न इंडिया के बल्कि वर्ल्ड के नींव के पत्थर बने, और न सिर्फ नींव के पत्थर बने बल्कि मील का पत्थर भी बने, माइलस्टोन्स। भारत में जब 50 सबसे बड़ी शख्सियतों को लिस्ट किया गया तो उन पर एक किताब लिखी गई और ये किताब शुरू हुई गौतम बुद्ध से और खत्म हुई धीरू भाई अंबानी पर, जिन्होंने इंडिया में इंडिया के चेंज मेकर का रोल अदा किया। आज हम उन्हीं धीरू भाई अंबानी की बात करने वाले हैं, एकमात्र बिजनेसमैन जिन्हें इतना बड़ा कद हासिल हुआ। धीरू भाई अंबानी जब पैदा हुए तो वे संसार सागर में बिल्कुल एक मामूली मछली की तरह ही थे। संसार का समंदर बहुत बड़ा था, ह्यूज, लेकिन उनके फिन्स में गजब का हौसला था। धीमे धीमे तैरते तैरते उन्होंने जो स्पीड पकड़ी, ऐसी स्पीड पकड़ी कि फिर उनको कोई पकड़ ना पाया। वो आगे ही आगे बढ़ते चले गए, सबको पीछे छोड़ते हुए। ये सब हौसला सी तो होता है, लेकिन इसके साथ ही जरूरी होता है आइडिया। उनके पास आइडियाज थे, नए और बेहतरीन। उनके पास उनके एग्जीक्यूट करने की बेहतर स्ट्रेटेजी और कनेक्शंस भी थे, जिसकी बदौलत वो रुके नहीं, आगे से आगे बढ़ते ही चले गए। सबका जिक्र करेंगे हम, लेकिन कहानी को

0: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर समर के साथ आप सुन रहे हैं लेजेंड्स अचीवर्स।
1: आई एम अ बिगर शार्क, मैं नहीं हूँ बल्कि मैं आज

बात कर रहा हूँ वो अपने बारे में कहा करते थे यही। लेजेंड्स की इस घड़ी में आज हम बात कर रहे हैं एक बहुत बुलंद हौसलों और ख्वाबों को पूरा कर दिखाने का मादा रखने वाले धीरू भाई अंबानी जी की। धीरू भाई जिन्होंने 1985 में शेयर होल्डर्स के साथ एक एनुअल मीटिंग रखी, तो उस वक्त मुंबई में कोई बड़ा मीटिंग हॉल नहीं हुआ करता था, इसलिए मीटिंग रखी गई फुटबॉल स्टेडियम में, जबकि कंपनी को अभी तक 2 decades भी नहीं हुए थे। आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि ये कितना बड़ा अचीवमेंट था। इन 20 सालों में यानी 2 decades में उनकी कंपनी सरकार को सबसे बड़ा टैक्स रेवेन्यू देने वाली कंपनी बन गई, जो कि गवर्नमेंट के पूरे टैक्स कलेक्शन का 5% था। और उस वक्त उनकी कंपनी देश की 3rd number की कंपनी थी। उनके ऊपर सिर्फ 2 ही कंपनी थी, टाटा स्टील और टाटा इंजीनियरिंग, और इन कंपनीज को कई साल हो गए थे, लेकिन लग रहा था कि रिलायंस टेक्सटाइल्स सबको जल्द ही पछाड़ने वाली है, और उसने पछाड़ा भी। लेकिन ये बात तब की है जब कंपनी को सिर्फ 20 साल ही हुए थे। इस कंपनी ने धीरू भाई के ख्वाबों में आना तभी शुरू कर दिया था जब उन्होंने कॉलेज के बाद अदनपोर्ट में एक कंपनी में क्लर्क की नौकरी शुरू की थी। एक फ्रेंच कंपनी थी जो शेल ऑयल बेचा करती थी। यहाँ इनकी काबिलियत को पहचान कर धीरे धीरे कंपनी ने इनको अपना रिटेल मार्केटिंग का इंचार्ज बना दिया। वो लंच आवर्स में बाहर जाते और बाजार की टोह लेते ताकि ये मालूम पड़े कि ग्लोबल ट्रेंड्स क्या हैं, कैसा बिजनेस इन दिनों चल रहा है। यहाँ से इनको कीनिया, युगांडा, एरिट्रिया, सोमालिया जाना होता था, और अब बाजार में इनकी पहचान बढ़ने लगी, बहुत सारे कॉन्टेक्ट्स बन गए। इसमें इनको बहुत मजा आने लगा और उन्हें लगा उन्हें बिजनेस करना चाहिए। अच्छा, यहाँ एक बड़ी मजेदार बात हुई। पूरा हफ्ता काम करने के बाद वो एडनपोर्ट में तैरा करते, जहाँ बेइंतहा शार्क हुआ करते थे। उनके साथ वाले स्विमर सोचा करते थे कि कमाल का बंदा है, किसी बड़ी शार्क की तरह समंदर में तैर रहा है। शिकार और शिकारी के बीच डिफरेंशिएट करते हुए ये जरूर एक बड़ा बिजनेसमैन बनेगा, ऐसा लोग उस वक्त ही कहने लग गए थे। फिर क्या हुआ बताएंगे बताएंगे, कहानी में बहुत

0: कहीं कोई चाहता है 105 बच्चे।
1: बेबी बूम नहीं, बेबी सुनामी। क्रेजी दुनिया, क्रेजी खबरें और हमारा ये क्रेजी शो। दिस इज मस्ती मैडनेस ऑन रेडियो मस्ती 24/7।
2: डाउनलोड रेडियो मस्ती 24/7 ऐप टू कॉल अस इंस्टेंटली और ईमेल, व्हाट्सएप, टेक्स्ट अस फ्रॉम द ऐप। जोश में रहो,
3: हेल्दी खाओ, प्रोटीन खाओ, हेल्दी खाओ, प्रोटीन खाओ।
0: शाम की चाय हो, ऑफिस का ब्रेक हो या लेट नाइट बिंज वॉचिंग,
3: हेल्दी खाओ, प्रोटीन खाओ, हेल्दी खाओ, प्रोटीन खाओ।
0: हेल्दी मंचिंग का परफेक्ट पार्टनर आप सिर्फ एक क्लिक दूर,
4: जीजी।
0: कृषि वल नट्स ओनली ऑन ggmartonline.com। प्रीमियम कैश्यूज, कैलिफोर्निया आमंड्स, पिस्ताचियोस, पम्पकिन सीड्स, मखाना और भी बहुत सारे होलसम हेल्दी ऑप्शंस। बस लॉग ऑन कीजिए ggmartonline.com।
4: ggmart, योर पर्सनल ग्रोसर।
5: समर के साथ सुनते रहिए लेजेंड्स अचीवर्स, किस्से उन हस्तियों के जो जीने की प्रेरणा बने। ओनली ऑन रेडियो मस्ती 24/7 लाइव।
6: एक बार फिर से आप सभी का इस्तकबाल, आपका स्वागत। आप हैं मेरे यानी समर के साथ और सुन रहे हैं लेजेंड्स द अचीवर्स सीरीज। आज मैं आपको सुना रहा हूँ धीरू भाई अंबानी की कहानी। धीरू भाई अंबानी यानी धीरज लाल भाई अंबानी, जी उनका असली नाम यही है, पूरा नाम यही था। एक बहुत गरीब परिवार में वो जन्मे। तारीख थी 28 दिसंबर 1932, 28 दिसंबर 1932। इनके फादर एक स्कूल टीचर थे। पांच भाई बहनों के बीच जन्मे धीरू भाई अंबानी तीसरे नंबर के बच्चे थे। स्कूल में पढ़ते हुए ये लोकल पॉलिटिक्स से जुड़ गए थे और सोशल पॉलिटिकल एक्टिविटीज में भी हिस्सा लेते थे, खास करके एंटी ब्रिटिश एक्टिविटीज में। जब वो छोटे थे, मात्र 18 साल के, तभी वो एडन चले गए। अच्छा, मैंने बताया नहीं, उनके बड़े भाई वहाँ काम करते थे, तो वहाँ उन्होंने एक कंपनी में उन्हें क्लर्क की नौकरी दिलवा दी। अच्छा, यहाँ एक इंटरेस्टिंग बात ये हुई कि एडन यानी एक ऐसी जगह जहाँ बहुत सारे लोग अलग अलग जगह के और अलग अलग कल्चर के थे, तो वहाँ उनका सबसे ज्यादा साथ दिया भारत के सबसे पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की किताब डिस्कवरी ऑफ इंडिया ने और ग्लिम्पसेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री ने। इसे उन्होंने खुद के लिए मोटिवेशन के तौर पर काम में लिया और लोगों के बीच अपनी जगह बनाने में इसका इस्तेमाल किया। इसके साथ ही एंशिएंट साधुस और राजाओं के बारे में पढ़कर उन्होंने जाना कि कितना डेलिकेट, सेंसिटिव और अंडरस्टैंडिंग होना जरूरी है एक अच्छा बिजनेसमैन बनने के लिए। और बड़ा बनने के लिए कैश की जरूरत नहीं होती है, बल्कि पावर ऑफ इन्फ्लुएंस की जरूरत होती है। बस यही बात उन्होंने गांठ बांध ली और इंडिया आ गए। यहाँ उन्होंने अपना सबसे पहला बिजनेस शुरू किया, रिलायंस कमर्शियल कॉरपोरेशन। उस वक्त उनके पास महज 15,000 रुपए थे। बॉम्बे के भाट बाजार में उन्होंने पहला ऑफिस बनाया और काम शुरू कर दिया। ये सबसे

0: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर। समर के साथ आप सुन रहे हैं लेजेंड्स अचीवर्स।
1: वेलकम बैक लेजेंड्स में। आज हम जिस अचीवर की बात कर रहे हैं वो हैं धीरू भाई अंबानी, जिन्हें भारत के चेंज मेकर शख्सियतों में शुमार किया जा सकता है, जिन्होंने न सिर्फ भारत को एक बेहतरीन बिजनेस प्लेटफॉर्म के तौर पर पेश किया बल्कि भारत के इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट में भी न भूलने

आपको हर एक मौके को, हर एक अवसर को बनाना पड़ता है। और इसी तरह से उनके कनेक्शन बनते चले गए और अर्ली 60s में इन्होंने शुरू किया टेक्सटाइल और धागा बनाने का धंधा। और उन दिनों वो बॉम्बे के बिजनेसमैन के बीच पक्के बनिया के तौर पर जाने जाने लगे। मुंह में पान, घर जाने के बजाय दिन रात चाय पीना और वहीं कुछ खा पी लेना, कोई होश नहीं खुद का सिवाय जोश के कि कुछ करना है। परिवार को एक कमरे की चौल में रख रखा था। बस कुछ ही साल में, यानी 1967 आते आते तो रिलायंस टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी तक बन गई, जिसका शेयर कैपिटल 15 लाख रुपए था। और 10 साल बाद पब्लिक शेयर वाली कंपनी बन गई, यानी जनरल पब्लिक से भी इसमें इन्वेस्ट करने को कहा गया। तब किसी को पता नहीं था कि आखिर ये है क्या। लेकिन उससे पहले संघर्ष भी बहुत होता है शुरुआती दिनों में, जब पैसे नहीं होते थे। इनके गांव के एक बड़े लैंड ओनर से 4 लाख रुपए इन्होंने मांगे, पर उसने कहा कि ये आइडिया काम नहीं करेगा, ये को...

थकन चारों ओर है, चलते जाओ, पहुंचता कौन है, चलते बहुत हैं। नई दुनिया के सुंदर बन के अंदर पुराने वक्त के पौधे बहुत हैं, और उन्हीं पुराने वक्त के पौधों की कहानी सुनाएगा समर, जो आज हमारी राहों में छायादार घने पेड़ बनकर खड़े हैं, जिनके होने से सफर की कड़ी धूप भी छांव सी लगती है। लेजेंड्स

समर के साथ सुनते रहिए लेजेंड्स अचीवर्स, किससे उन हस्तियों के जो जीने की प्रेरणा बने, ओनली ऑन रेडियो मस्ती 24/7 लाइव। वेलकम बैक। आज हम लेजेंड्स के सफर पर बात कर रहे हैं एक बहुत ही बड़े ट्रेडर गोविंद राम सिकसरिया जी की, जो पूरे वर्ल्ड में छा गए थे, खास तौर पर 3 सिग्निफिकेंट एंड बिग कॉन्टिनेंट्स, यूरोप, एशिया एंड अमेरिका में, नॉर्थ अमेरिका। लेकिन कुछ टाइम बाद दुनिया भर के स्टॉक एक्सचेंजेस में अपना असर डालने के बाद उन्होंने ट्रेडिंग से इतर इंडस्ट्रीज डालने की सोची। उन्होंने एक नई फर्म बनाई, गोविंद राम ब्रदर्स लिमिटेड। उन्होंने वेजिटेबल ऑयल बनाने की इंडस्ट्री, शुगर बनाने की, टेक्सटाइल्स, मिनरल्स, बैंकिंग, मोशन पिक्चर्स और प्रिंटिंग के क्षेत्र में भी हाथ आजमाए। हैदराबाद में पहली ऑयल मिल शुरू की, जिसमें कॉटन के बीज से ऑयल निकालने का काम शुरू किया गया। ये पहली दफा ही हुआ था जब जिन बीजों को वेस्ट समझा जाता था उनसे ऑयल निकालने का काम शुरू किया। यानी उनके पास आइडियाज थे, और आइडियाज ऐसे वैसे घिसे-पिटे नहीं, इनोवेटिव आइडियाज, और जज्बा भी था। और यही नहीं, वो बैंकिंग में भी कूद पड़े, भारतीयों के लिए इंडियन बैंक की उस वक्त जरूरत को देखते हुए, ताकि न सिर्फ उनको काम के लिए पैसा दिया जा सके बल्कि उनकी जमा पूंजी की हिफाजत भी हो सके। और उन्होंने सबसे पहले बैंक बनाया राजस्थान बैंक। बैंक की ब्रांचेस बॉम्बे और सेंट्रल इंडिया में काम करने लगी। एक बात तो कहनी पड़ेगी, आकाश से पाताल तक उन्होंने हर अपॉर्चुनिटी को कैश करने की कोशिश की। पाताल में इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि उन्होंने माइनिंग में भी जाने का पूरा प्लान बना लिया था, और कोंकण के सावंतवाड़ी रीजन में माइनिंग का काम किया भी। माइका की माइनिंग की उन्होंने, और ये इलाके खाली पड़े थे, किसी पर इनका ध्यान ही नहीं था। माइका के बहुत बड़े डिपॉजिट्स थे इन जगहों पर। जहां न पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि, ये तो आपने सुना होगा, लेकिन जहां न पहुंचे कोई भी आइडिया वहां पहुंचे सेठ गोविंद राम जी का आइडिया। ये अभी आप सुन लीजिए, ये होता था उस वक्त। मैं तो समझ ही नहीं पा रहा हूं कि क्या क्या बताऊं आपको, किस किस फील्ड की बात करें। पहले तो मुझे लगता था कि सिर्फ चाचा चौधरी का दिमागी कंप्यूटर से तेज चलता है, अब मुझे पूरा यकीन है कि सेठ जी से सब पीछे ही हैं। तो चलिए यहां पर एक छोटा सा।

0: रेस सिर्फ स्पीड की नहीं दिमाग की भी है।
1: मस्ती मीडिया नेटवर्क सिंगापुर प्रेजेंट्स द लायन सिटी चैलेंज। Singapore's smartest game show, where knowledge wins. And you too. To participate, text the Lion City Challenge to 9151-8963.
2: राज की बात बताऊं, मेरी आवाज कभी अच्छी थी ही नहीं।
0: अगर हम सब की जानी पहचानी गोल्डन वॉइस के मालिक दी अमीन सयानी जी का ये कहना है, तो सोचिए आप भी अपनी आवाज को सबके दिलों तक कैसे ले जा सकते हैं। द आरजे एकेडमी एट मस्ती मीडिया नेटवर्क इज नाउ ओपन फॉर यू। That too with a hybrid model for your convenience. 12 hours of training per level. Flexible individual focused syllabus offered for 14 years and above. Selected trained voices to get an opportunity to host live on Radio Musti 24/7. Email a brief intro to info@radiomusti.com.sg requesting for application form.
3: Namaste behno aur bhaiyo, main aapka dost Amin Sayani bol raha hoon.
4: कहानियाँ उनकी जिनके होने से हम हैं। सुने लेजेंड्स अचीवर्स में समर की जुबानी रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर।
5: धीरूभाई अंबानी एक ऐसा ट्रेडर जिसने भारत की विश्व नक्शे पर एक अलग पहचान बना दी। उन्हीं की कहानी और उन्हीं के कुछ आइडियाज और ट्रेड्स मैं आज आपको बता रहा हूँ। कैसे बिजनेस महज आपके दिमाग का खेल नहीं होता, बल्कि उसमें बहुत मेहनत भी होती है। शुरुआत में जो आपके साथी होते हैं वो आपसे अलग हो जाते हैं धीरे धीरे। धीरू भाई ने लेकिन उनके जाने का कभी शोक नहीं किया, बल्कि ये कहा कि मुझे अपने साथ दिन रात खपने वाले लोग चाहिए, न कि ऐसे लोग जो सुबह क्लीन शर्ट पहनकर आए और रात तक क्लीन शर्ट पहनकर ही घर लौट जाएं। उन्हें दिमागदार बंदे चाहिए थे जिन्हें बाजार की जानकारी हो। उनकी वाइफ ने धीरू भाई के लिए अक्सर ही कहा कि वो बहुत ही ज्यादा फास्ट थे। कहते थे किसी भी रील में कोई ढील नहीं, उसे झट से कर डालो। लोग कुछ और करने की सोचकर उस फील्ड में आते, उससे पहले धीरू भाई वो काम खत्म करके किसी और ही मैदान में कूद पड़ते, जैसे कोई जंग हो, हर पल नई, जहां बस जीतना ही है। अकॉर्डिंग टू धीरू भाई, मैनेज द एनवायरमेंट यू आर इन। यस, यही सही तरीका भी है, तभी आप आगे बढ़ सकते हैं। 100% की बात कही धीरू भाई ने, और यही स्ट्रेटेजी उन्होंने फॉलो भी की। उन्होंने अपने आसपास के वातावरण को मैनेज करने के लिए हमेशा राइट बिजनेसमैन और राइट पॉलिटिशियन को अप्रोच किया। भले ही आइडिया उतना सटीक न रहा हो, लेकिन कनेक्शन बिल्कुल सही रहे। ये भी एक तरह की बहुत ही बेहतरीन क्वालिटी थी उनमें। साल 1966 में तो गुजरात सरकार ने रिलायंस टेक्सटाइल को 125 एकड़ जमीन दी और वहां इनकी टेक्सटाइल मिल शुरू हुई। इन्होंने जिस धागे को इम्पोर्ट किया उसी से कपड़ा बनाना शुरू किया और इसका नाम रखा गया विमल, यानी एकदम प्योर और स्पॉटलेस।

0: They were not chosen. They were created.
1: उसकी माँ का नाम जानकी था, हम इसे सीता बुलावेंगे.
0: Alpha. The newest chapter in the YRF spy universe.
2: पर इस बार सीता आज लंका खुद चलाने आई.
0: आलिया भट्ट एंड शर्वरी इन इंडियाज फर्स्ट फीमेल लेड एक्शन स्पेक्टिकल वेयर एवरी डिसीजन कुड बी देयर लास्ट.
3: अल्फा प्रोग्राम उसका जुनून है और जो भी उसके रास्ते में आता है वो उसे मार देता है.
0: बॉर्न टू फाइट बिल्ट टू सर्वाइव. अल्फा रिलीजिंग 3rd जुलाई आइलैंड वाइड एट द सिनेमास नियर यू. ब्रॉट टू यू बाय होम स्क्रीन एंटरटेनमेंट. आपकी नॉलेज आपकी जीत.
4: Musty Media Network Singapore presents the Lion City Challenge. Singapore's smartest game show, where knowledge wins. And you too. To participate, text the Lion City Challenge to 9151 8963.

0: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर। समर के साथ आप सुन रहे हैं लेजेंड्स अचीवर्स।
1: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर आप हैं समर के साथ। शो चल रहा है लेजेंड्स द अचीवर सीरीज और मैं आपका दोस्त समर आज आपको सुना रहा हूँ धीरू भाई अंबानी की कहानी। उनकी राह पर चलते हुए हम उनके पैरों के निशान बटोरते चल रहे हैं। विमल इंडस्ट्री शुरू हो गई थी, यहां तक मैंने कहानी आपको सुनाई। एक रोज धीरू भाई अंबानी की पत्नी की फ्रेंच शिफॉन की साड़ी वार्डरोब से गायब हो गई। उन्हें वो ढूंढे न मिली, वो काफी हैरान थी, परेशान थी। खैर साहब, कुछ दिनों के बाद उन्होंने वैसी की वैसी साड़ी पहने औरतों को बाजार में देखा आस पास। बाद में उन्हें पता चला कि उन्हीं की गुजरात वाली मिल में अब वैसी साड़ियां बन रही हैं। असली शिफॉन और उसमें फर्क करना मुश्किल होने लगा। खैर, इस दर्द को तो एक औरत ही जान सकती है, समझ सकती है कि उसकी जैसी साड़ी किसी और ने भी पहनी हो। वेल, 1975 में आते आते वर्ल्ड बैंक ने यह तक कह दिया कि एक ही कंपनी है जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स को मैच करती है और वो है रिलायंस। और आप सोच भी सकते हैं कि ओल्ड टेक्सटाइल मिल्स पर क्या गुजरी होगी उस वक्त। 2 साल बाद राइवल्स की कंप्लेंट के बाद इंडियन गवर्नमेंट ने इंपोर्ट ऑफ पॉलिएस्टर पर बैन लगा दिया, क्योंकि इल्जाम था कि गवर्नमेंट रिलायंस को प्रॉफिट पहुंचाने के लिए काम कर रही है। लेकिन जैसा मैंने कहा कि धीरू भाई के कनेक्शंस थे ही, उन्होंने पॉलिएस्टर बनाने में लगने वाले केमिकल को इंपोर्ट किया और अब धागा भी खुद बनाने लगे। इससे पहले कि कोई और सोच पाता, धीरू भाई कर लेते थे। शायद यही वजह रही कि वो एकमात्र ऐसे बिजनेसमैन हैं जो भारत के बदलते भविष्य की कैटेगरी में आते हैं या फाउंडर्स में से आते हैं। खैर साहब, रिटेल स्टोर में एकमात्र फैब्रिक जिसने पूरा मार्केट एक्वायर कर लिया था वो था विमल। धीरू भाई ने इसके लिए अब विदेशों में मार्केट तलाशना शुरू कर दिया। मिल में प्रोडक्शन बहुत ज्यादा, बाजार में डिमांड जब थोड़ा कम होने लगी तो उन्होंने एक दिन दिल्ली आए पॉलिश डेलीगेशन से बात की, रिलायंस मिल विजिट कराई और बहुत सारा कपड़ा वो लोग ले गए। तो वेल, इस तरह से रिलायंस अपने आप में एक ब्रांड बन चुका।

0: कहीं कोई चाहता है 105 बच्चे।
1: बेबी बूम नहीं, बेबी सुनामी। क्रेजी दुनिया, क्रेजी खबरें और हमारा ये क्रेजी शो। दिस इज मस्ती मैडनेस ऑन रेडियो मस्ती 24/7।
2: डाउनलोड रेडियो मस्ती 24/7 ऐप टू कॉल अस इंस्टेंटली और ईमेल, व्हाट्सएप, टेक्स्ट अस फ्रॉम द ऐप। जोश में रहो,
3: हेल्दी खाओ, प्रोटीन खाओ, हेल्दी खाओ, प्रोटीन खाओ।
0: शाम की चाय हो, ऑफिस का ब्रेक हो या लेट नाइट बिंज वॉचिंग,
3: हेल्दी खाओ, प्रोटीन खाओ, हेल्दी खाओ, प्रोटीन खाओ।
4: हेल्दी मंचिंग का परफेक्ट पार्टनर आप सिर्फ एक क्लिक दूर,
5: जीजी।
4: कृषि वल नट्स ओनली ऑन ggmartonline.com। प्रीमियम कैश्यूज, कैलिफोर्निया आमंड्स, पिस्ताचियोस, पम्पकिन सीड्स, मखाना और भी बहुत सारे होलसम हेल्दी ऑप्शंस। बस लॉग ऑन कीजिए ggmartonline.com।
5: ggmart, योर पर्सनल ग्रोसर।
6: समर के साथ सुनते रहिए लेजेंड्स अचीवर्स, किस्से उन हस्तियों के जो जीने की प्रेरणा बने। ओनली ऑन रेडियो मस्ती 24/7 लाइव।
7: लेजेंड्स के इस नए सेशन में जहां हम आपके लिए ले आए हैं कुछ अचीवर्स की कहानियां, कैसे उन्होंने न सिर्फ अपने देश के लोगों बल्कि विश्व भर में एक छाप छोड़ी, आज करोड़ों लोगों को एम्प्लॉयमेंट दे रहे हैं। एक एंटरप्रेन्योर की कहानी, और ये है आज धीरू भाई अंबानी, जिनके दोनों बेटे आज उनके साम्राज्य को न सिर्फ संभाले हुए हैं बल्कि उसे उन्होंने और भी नई ऊंचाइयां दे दी हैं। वेल, अब अंबानी पूरे पावरफुल हो चुके थे। एडवर्टाइजिंग पर उन्होंने बहुत ही काम किया, फिल्म स्टार, क्रिकेटर्स, मॉडल्स, सब एक ही बात करते थे, ओनली विमल। हालांकि बहुत सारी बातें ऐसी भी हुई जिनका जिक्र हम यहाँ करना लाजमी नहीं समझते, क्योंकि हर आदमी के काम करने के क्रिटिक्स भी होते हैं। धीरू भाई के भी थे, लेकिन वो इतनी बड़ी शार्क बन चुके थे कि अब कुछ भी करना पॉसिबल नहीं था। उनके राइवल्स धीरे धीरे पस्त होने लगे। 1990 में एक बार उनके ऑफिस पर जब छापा पड़ा, रेड पड़ी, तो उनके ऑफिसर्स को गिरफ्तार किया गया। उनके पास कुछ डॉक्यूमेंट्स मिले जिसमें कैबिनेट बजट के डॉक्यूमेंट थे। तब यही जोक पूरे मार्केट में था कि कैबिनेट ने अंबानी को बजट लीक नहीं किया बल्कि अंबानी ने कैबिनेट के लिए बजट लीक किया है। 1985 की उस मीटिंग की भी बात मैंने की थी जहां मीटिंग के लिए कोई उपयुक्त हॉल नहीं मिला था और मीटिंग रखी गई थी एक फुटबॉल स्टेडियम में। इसके ठीक बाद ज्यादा से ज्यादा शेयर होल्डर्स बनाने के लिए क्या क्या ना किया गया। लोगों को घर घर जाकर फॉर्म बांटे गए, हेलीकॉप्टर से पर्चे गिराए गए। कैन यू इमेजिन, इट वॉज दैट बिग।
8: बाजू बाबू।

0: समर के साथ सुनते रहिए लेजेंड्स अचीवर्स, किससे उन हस्तियों के जो जीने की प्रेरणा बने, ओनली ऑन रेडियो मस्ती 24/7 लाइव।
1: हाँ जी, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आप है मेरे यानी समर के साथ सुन रहे हैं लेजेंड्स। आज धीरू भाई अंबानी की कहानी मैं आपको सुना रहा हूँ। हालांकि मैंने आपको बताया था कि धीरू भाई ने जिन कारनामों को अंजाम दिया वो इतने बड़े हैं कि इनको एक शो के अंदर समेट पाना लगभग नामुमकिन ही लगता है। वो दुनिया की बड़ी बिजनेस सेलिब्रिटी बन गए थे, कितने ही अवार्ड्स उन्हें मिले, उनके बड़े बड़े नेताओं और ब्यूरोक्रेट्स से कनेक्शंस थे और इन सब ने उनको स्टार बना दिया था। ओवल चेहरा, अ स्माइल ऑन हिज फेस। कॉलेज के जमाने में एक जीप और कार के सपने देखने वाले धीरू भाई के पास एक बड़ी अंपाला कार थी और न जाने कितनी कार्स थी। देश ही नहीं बल्कि विदेशों तक उनकी धूम मची रही। एक दफा जब उनसे काफी सारे बिजनेसमैन खफा थे, जेलसी रखने लगे थे कि वो ब्लैक मार्केटिंग करते हैं, धीरू भाई अंबानी घबराए नहीं और उन्होंने सबकी एक मीटिंग बुला ली। सभी ट्रेडर्स से उन्होंने कहा कि आप में से जो भी ऐसे हैं जिन्होंने बिजनेस के लिए मेरे साथ कोई रابطہ ना रखा हो वो बताएं या मेरे पास ना आए हों। हम सब बिजनेसमैन हैं और बिजनेस ऐसे ही होता है, प्लानिंग, स्ट्रेटेजी और कनेक्शन से। सब चुप हो गए, कोई कुछ नहीं बोला क्योंकि सब जानते थे कि वो एक बड़ी शार्क हैं। छोटी मछलियां कुछ कर नहीं सकती, जीवन का यही कायदा है। बड़ी मछली के दायरे में छोटी मछली, डार्विन के सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट सिद्धांत से परे ये सिद्धांत है समाज का। साल 2002 में धीरू भाई अंबानी गुजर गए मगर अपने पीछे एक विरासत छोड़ गए रिलायंस के रूप में, जिसके लिए उन्होंने कहा, रिलायंस इज ट्रायंफ ऑफ ट्रूथ। आज उनकी विरासत को उनके बेटे संभाल रहे हैं, बड़ा बना रहे हैं और धीरू भाई अंबानी वक्त का हसीन किस्सा बनकर उन लोगों की फेहरिस्त में है जिन्हें फाउंडर ऑफ इंडिया, मॉडर्न इंडिया कहा जाता है। चलिए फिलहाल के लिए आज इतना ही, एक और कहानी के साथ मैं लौटूंगा बहुत जल्दी। यहीं पर आप सुनते रहेगा लेजेंड्स समर के साथ। कैसी लग रही है नई सीरीज हमें जरूर बताएगा, हमारे फेसबुक पेज पर आकर इंतजार रहेगा आपके जवाबों का। फिर मिलेंगे, तब तक अपना ख्याल रखिए, अपने आसपास के लोगों का और चीजों का ख्याल रखिए। मोहब्बत बनकर किसी के दिल में बस जाइए और कुछ ऐसा कर जाइए कि मैं भी आपकी कहानी सुनाने में फख्र महसूस करूं। तो आइए ये वादा करें एक दूसरे से कि हम सब मिलकर कुछ बड़ा करेंगे।

0: सिर्फ वीकेंड वॉज अ गाय,
1: वो आ गया, देखो वो आ गया।
0: इफ वीकेंड वॉज अ गर्ल, इफ वीकेंड वॉज अ फिल्मी डायलॉग,
2: स्वागत नहीं करोगे आप हमारा।
0: एंड इफ वीकेंड वॉज एन ऐप,
3: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव,
4: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव,
5: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव,
6: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव।
0: How to make best of weekends that travel faster than light. Tune into our Musty Weekends on Radio Musty 24/7 Live, the perfect recipe for you to unwind, keeping body entertainment close to you, anywhere, anytime. Just

0: ये गया एग्जिट पर और गाने आ गए नॉनस्टॉप म्यूजिक नॉनस्टॉप मस्ती ओनली ऑन मस्ती म्यूजिक कैफे
1: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव अ पार्ट ऑफ मस्ती मीडिया नेटवर्क सिंगापुर
2: चेक इट आउट
3: इट्स द बेस्ट ऑफ बॉलीवुड प्लेइंग ऑन रेडियो मस्ती 24/7 लाइव हैव अ मस्ती भरा वीकेंड

0: इस वीकेंड वाज अ गाय,
1: वो आ गया, देखो वो आ गया।
0: इस वीकेंड वाज अ गर्ल, इस वीकेंड वाज अ फिल्मी डायलॉग,
2: स्वागत नहीं करोगे आप हमारा।
0: एंड इफ वीकेंड वाज एन ऐप,
3: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव,
4: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव,
5: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव,
6: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव।
0: How to make best of weekends that travel faster than light. Tune into our Musty Weekends on Radio Musty 24/7 Live, the perfect recipe for you to unwind, keeping body entertainment close to you, anywhere, anytime. Just

0: इस वीकेंड वाज अ गाय,
1: वो आ गया, देखो वो आ गया।
0: इस वीकेंड वाज अ गर्ल, इस वीकेंड वाज अ फिल्मी डायलॉग,
2: स्वागत नहीं करोगे आप हमारा।
0: एंड इफ वीकेंड वाज एन ऐप,
3: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव,
4: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव,
5: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव,
6: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव।
0: How to make best of weekends that travel faster than light. Tune into our Musty Weekends on Radio Musty 24/7 Live, the perfect recipe for you to unwind, keeping body entertainment close to you, anywhere, anytime.

0: सिंगापुर बोर्ड हो गेम खेलनी है चैलेंज एक्सेप्ट करोगे एक्साइटेड
1: मस्टी मीडिया नेटवर्क सिंगापुर प्रेजेंट्स द लायन सिटी चैलेंज Singapore's smartest game show, where knowledge wins. And you too. To participate, text the Lion City Challenge to 9151-8963.
2: The perfect recipe for you to unwind. Musty Weekends only on Radio Musty 24/7 Live.

I would like to thank Mirchi Awards for giving me this opportunity. हर कंपोजर का एक ड्रीम होता है. मेरा भी एक ड्रीम था कि मैं अपने देश के साउंड्स को लेके कुछ करूं. और मुझे आज इस प्लेटफॉर्म पे ये मौका मिला कि मैं अपने देश के म्यूज़िक को एक साथ इकट्ठे बाइंड करके एक स्टेज पे लाऊं. एंड इट वुडन्ट हैव बीन पॉसिबल विदाउट दिस अमेजिंग आर्टिस्ट्स ऑन स्टेज. एंड दिस इज साउंड ऑफ आवर नेशन. एंड दिस इज वॉट मेक्स मी लव माई जिंदगी. सो ऑन दैट नोट, लेट्स गो.

0: बड़े बड़े देशों में ऐसी छोटी छोटी बातें होती रहती हैं।
1: छोटी छोटी बातें छोड़ो और बड़े बड़े हिट सुनो। आपके रिक्वेस्ट सी बनाएंगे शो का ब्लॉकबस्टर प्लेलिस्ट। रोमांटिक, फिल्मी, पार्टी वाइब्स, सब मिलेगा यही के यही। व्हाट्सएप करिए हमारे ऐप के थ्रू या फिर डायरेक्ट सिंगापुर नंबर 9151896 पर। मस्ती वॉइस आपकी चॉइस।
2: ओनली ऑन रेडियो मस्ती 24/7 लाइव, अ पार्ट ऑफ मस्ती मीडिया नेटवर्क सिंगापुर।
3: चेक इट आउट।
1: Best of Bollywood playing on Radio Masti 24/7 Live. Have a masti bhara weekend.

की शुरुआत हो थोड़ी सी न्यूज के साथ, थोड़ी सी गॉसिप के साथ और बहुत सारी मस्ती के साथ। क्योंकि जब ट्यूसडे आता है ना, तो आती है आरजे अंतरा की बातों की बारिश। Your daily scoop of what's hot, what's viral and what's worth knowing. Served fresh with great music and my unbeatable charm, you see. Tune in to me on Masti Ka Mantra with RJ Antara. Har Tuesday subah 7 baje sirf Radio Masti 24/7 Live Pe. Weekend ka maza with the best of Bollywood playing only on Radio Masti 24/7 Live.

0: चार्ट टू रूलिंग द काउंटडाउन. ये है मस्ती टॉप 20. नाउ पंपिंग अप योर थर्सडे इवनिंग्स 5 PM ऑनवर्ड्स द लेटेस्ट एंड द ब्राइटेस्ट द वीक्स टॉप चार्ट बस्टर्स.
1: और आप में से जितने लोगों ने कहा अरे गलत ऐड चल गई, नहीं जी नहीं, बिल्कुल भी गलत ऐड नहीं चली है, बिल्कुल सही जगह पे पहुंचे हैं आप. दिस इज मसी टॉप चार्ट्स विद रेणुका. अरे आज के दिन, हाँ व्हाई नॉट, आज ही के दिन बिल्कुल. तो चलिए शुरुआत करेंगे. जी हाँ, क्यों हमने आज के दिन कर दिया? Well, that's because Friday evenings को आप में से आधे लोग तो पार्टी पे जा रहे होते हैं, तो मैं यहाँ पर काम करती रहती हूँ, तो मैंने कहा भाई साहब ऐसा है कि अकेले मैं काम नहीं करूंगी, आप सब मेरे साथ में रहेंगे, और अगर साथ में नहीं रहेंगे तो ठीक है फिर मैं भी जा रही हूँ. और उसी के साथ में हमने डिसीजन लिया कि अब से हम फ्राइडे को नहीं थर्सडे को आएंगे आपका साथ देने के लिए. आफ्टर ऑल थर्सडे इवनिंग इज ऑलरेडी द बिगिनिंग ऑफ द वीकेंड, इजंट इट? प्रैक्टिस करने लग जाते हो कि इस वीकेंड पे क्या क्या करना है क्या क्या नहीं. सो वेल, जस्ट कीपिंग दैट इन माइंड गाइज, दिस इज रेडियो मस्ती 24/7 एंड इट इज मस्ती टॉप चार्ट्स. और मस्ती टॉप चार्ट्स में हमेशा की तरह गाने एब्सोल्युटली फ्रेश, और गाने जो है ना ऊपर नीचे एक दूसरे को धमकियां देते हुए निकलते चले आ रहे हैं, आगे ही आगे बढ़ते चले आ रहे हैं. है ना नया गाना? जी हाँ बिल्कुल, नंबर 20 पर. पिछली बार जो नंबर 20 पर गाना था उसको टोटली हमारी प्लेलिस्ट से बाहर धकेलता हुआ, धक्के मारता हुआ ये वाला गाना घुस बैठा है. एंड आई एम क्वाइट श्योर इसके म्यूजिक को देखते हुए दैट इट विल रीच टॉप चार्ट्स में और आगे.
2: गुलाबी साड़ी अणी लाली लाल लाल.
1: धमाल 4 के साउंडट्रैक से शुरुआत करते हैं गाना नंबर 20. इट इज मस्ती टॉप चार्ट्स विद रेणुका. स्टे ट्यून्ड गाइस, राइट फ्रॉम नाउ टिल 8 इन द इवनिंग रहूंगी मैं आपके बिल्कुल साथ. द नंबर इज 9151893. कॉल मी, टेक्स्ट मी, टॉक टू मी, टेल मी आज का नंबर 1 कौन सा होना चाहिए.
3: ट्रेंडिंग सॉन्ग नंबर 20.

जैसा कि मैंने आपको कहा, धमाल 4 के साउंडट्रैक से आप सुन रहे हैं गाना हेवली इंस्पायर्ड बाय द सिंगर संजू राठौर का वायरल हिट गुलाबी साड़ी, जिसमें हमने देखा रितेश देशमुख और अंजलि आनंद को। दिस इज फ्रॉम धमाल।

0: सुनो जरा, ग्रोसरी ना खत्म हो रही है तो एक केजी आटा,
1: हाँ जी जी,
0: आधा केजी मसूर दाल,
1: जी जी,
0: काजू किशमिश, ओ हाँ, अरे वो नमकीन भी खत्म हो रहे हैं,
1: जी जी।
0: आर यू इवन लिसनिंग, या ऐसे ही जी जी किए जा रहे हो?
1: अरे डार्लिंग, व्हाई टू फियर व्हेन जीजी मार्ट इज देयर।
0: क्या जी?
1: जीजी मार्ट, योर पर्सनल ग्रोसर। जस्ट लॉग ऑन टू ggmartonline.com, ग्रोसरी ऐड टू कार्ट करो, चेकआउट करो और ग्रोसरी एट योर डोरस्टेप।
0: वाजी, क्या बात जी।
1: ऑर्डर टुडे फ्रॉम जीजी मार्ट, योर पर्सनल ग्रोसर।
2: बॉलीवुड फ्लैशबैक।

भाई हर किसी का तो मुझे पता नहीं, लेकिन यहाँ मुझे बहुत प्यार मिलता है आप लोगों से. वेल द लेटेस्ट टू जॉइन आवर शो राइट नाउ इज आरती जी, माय एंजल विदाउट विंग्स. ऐसे सेव किया हुआ है अंतरा जी ने इनका नाम हमारे डेटाबेस में. रेडियो मस्ती 24/7, दिस इज रेनुका विद यू एंड ऑफ कोर्स इट्स मस्ती टॉप चार्ट्स.

0: प्यार। भाई क्या गाना है, जाबाज के गाने ना एब्सोल्युटली सुनते ही बनते हैं, एनी टाइम ऑफ द ईयर, एनी टाइम एनी डे सुन सकते हैं ये वाले गाने रेडियो मस्ती 24/7 पर। यू आर विद रेनुका, जी हाँ बिल्कुल। और अगला कौन सा गाना होना चाहिए? वेल मस्ती टॉप चार्ट्स है तो ऑब्वियस है ना कि अगला गाना मस्ती टॉप चार्ट्स से ही होगा। हेलो हेलो, कहाँ हो? हेलो एंड हेलो। ऑलराइट, सो वेल अभी ब्रेक से पहले, ब्रेक तो क्या ही था खैर हमारा, लेकिन इस पुराने गाने से पहले वी ऑलरेडी स्टार्टेड अ शो एंड आई सेड वेल द शो इज नाउ मूव फ्रॉम फ्राइडेज टू थर्सडेज। वेल बिकॉज फ्राइडे को मैं देख रही थी कि अपार्ट फ्रॉम मेरी अपनी टीम बड़े सारे आप लोग भी गायब हो रहे थे जल्दी जल्दी। मुझे 6:30-7 बजे या तो कोई हेलो बोलने आता था या फिर कोई बाय बाय करके चला जाता था, और मुझे इतना अकेलापन लगना शुरू हो चुका था दैट आई सेड लुक यू नो व्हाट गाइस आई एम गोना मूव दिस शो टू व्हाट इट used to be many many years back। जी हाँ, कोविड के टाइम पे आई रिमेम्बर आई यूज्ड टू होस्ट मस्ती टॉप चार्ट्स एंड इट यूज्ड टू हैपन ऑन थर्सडेज, तो आई वाज रियली मिसिंग दैट वाइब एंड दैट्स व्हाई आई थॉट चलो भाई छोड़ो गोली मारो दुनिया को और वापस ले आओ थर्सडे शाम को। तो हमारा गाना नंबर 19 कौन सा है? सरप्राइज सरप्राइज, गाना नंबर 20 भी धमाल 4 के साउंडट्रैक से और 19 भी फॉलोड बाय गाना नंबर 18। एंड आई एम क्वाइट श्योर कि ये गाना जाने वाला है जल्दी ही। आफ्टर कब तक वेलकम करते रहेंगे ना, रेडियो मस्ती 24/7 पर चल रहा है मस्ती का धमाल। जी हाँ, एंड दैट इज मस्ती टॉप चार्ट्स। थोड़ा सा ब्रेक लेते हैं यहाँ पर एंड आफ्टर यू गाइस कम बैक आई एम गोना टेल यू रणबीर कपूर के नखरे, जी हाँ, या मे बी नो नखरे एंड दैट इज वाई सरप्राइज सरप्राइज, यस और नो व्हाट्स योर टेक, नखरे वाला है या नहीं है? क्या सुना है, क्या पढ़ा है मुझे बताओ 9151896 3। एंड आई विल टेक दिस शॉर्ट ब्रेक एंड कम बैक वेरी क्विकली टू टेल यू है या नहीं है। डू यू लाइक him by the way?
1: Hit us on the gram. It's Radio Musty 24/7. And don't forget to like our ever buzzing Facebook page. Radio Musty 24/7 Singapore.
2: Check it out.
1: Trending song. Number 19.
3: Akatiri Mahatiya Ferikuri. Mulichi Kukari Ferikuri.

0: And you guessed it right, that is Guru Randhawa on the vocals, guys. This is Dhamaal 4 ke soundtrack se, Gaon Number 19 right now playing on Masti Top Charts.
1: राज की बात बताऊं, मेरी आवाज कभी अच्छी थी ही नहीं।
2: अगर हम सबकी जानी पहचानी गोल्डन वॉइस के मालिक दी अमीन सयानी जी का ये कहना है, तो सोचिए आप भी अपनी आवाज को सबके दिलों तक कैसे ले जा सकते हैं। द आरजे एकेडमी एट मस्ती मीडिया नेटवर्क इज नाउ ओपन फॉर यू। That too with a hybrid model for your convenience. 12 hours of training per level. Flexible individual focused syllabus offered for 14 years and above. Selected trained voices to get an opportunity to host live on Radio Masti 24/7. Email a brief intro to info@radiomasti.com.sg requesting for application form.
3: Namaste behno aur bhaiyo, main aapka dost Amin Sayani bol raha hoon.
4: Trending song, number 18.

0: Radio Musty 24/7 Live, a part of Musty Media Network Singapore. Check it out.
1: भाई अगर वेलकम की बात करनी है तो सबसे पहले तो मैं यही कहूंगी दैट यू आर वेलकम टू वॉच अल्फा. जी हाँ, आलिया भट्ट की ये फिल्म रिलीज होने वाली है कल ही के दिन एंड इट्स अ जीवी एक्सक्लूसिव. सो मेक श्योर दैट यू गो एंड वॉच इट जल्दी जल्दी. ओह माय गॉड, व्हाट एन अमेजिंग अमेजिंग फिल्म इट सीम्स लाइक. तो भाई जाके जरूर देखना है और जो सबसे जल्दी देखेगा उसको वापस आके मुझे अपना रिव्यू देना है. राइट, दे आर फ्रेश, दे आर हॉट, they are spicy and they are happening. Join us on Masti Top 20. तो पिछले दो गानों से पहले, well, सबसे पहले तो एक बार और आपका स्वागत रेडियो मस्ती 24/7 पर. दिस इज मस्ती टॉप चार्ट्स, जो कि शिफ्ट हो चुका है फ्रॉम फ्राइडे टू थर्सडे. जी हाँ, पॉपुलर डिमांड आपकी भी और मेरी भी कहीं ना कहीं. बट हाँ, हमारे प्रोग्राम में मैनेजर ने कहा ठीक है, ग्रांटेड. क्यों? क्योंकि फ्राइडे सुबह भी मैं बोल रही हूँ और फ्राइडे शाम भी मैं बोल रही हूँ. तो मैंने कहा भाई साहब, दो दो बार नहीं बोला जाता मुझसे इतना ज्यादा. इमेजिन, मुझे बोलने में प्रॉब्लम हो रही है. वेल, मस्ट बी एज, मस्ट बी एज, नथिंग एल्स. बट ऑन रेडियो मस्ती गाइस, जस्ट अ वाइल बैक आई टोल्ड यू दैट रणबीर कपूर और उसके नखरे तो बिल्कुल नहीं है. दैट इज वॉट टोटली मेक्स मी सो हैप्पी कि भाई इस इंसान के अंदर देर इज नो एंटराज. कैन यू इमेजिन, जब ये शूटिंग वूटिंग के लिए जाते हैं तो ये पूरे के पूरे सेट के जितने भी लोग हैं उनके नंबर्स अपने पास रखते हैं. एंड इट देर इज नो मैनेजर, देर इज नो मिडल मैन, ही रीचेज आउट टू एवरी वन, बिलीव इट और नॉट, एब्सोल्यूटली डायरेक्ट. कितनी प्यारी सी ये बात है ना, क्योंकि ना ही सिर्फ पैसे बचते हैं लेकिन साथ ही साथ में नखरे ना सहने की वजह से टाइम भी बचता है पूरे के पूरे क्रू का. अभी तो बताया रणबीर कपूर है वो. और ये है गाना नंबर 17. क्या है, कौन है, सुनते तो हो नहीं और उसके बाद सवाल पूछते हो. रेडियो मस्ती 24/7 पर अपना नेक्स्ट इज द मस्ती सॉन्ग ऑफ द आवर. थोड़ा सा पुराना गाना सुनेंगे, राजू बन गया जेंटलमैन, एंड देन ऑफ कोर्स राइट आफ्टर दैट वी विल लिसन टू गाना नंबर 17. साथ रेडियो मस्ती 24/7 पर सुनते हैं. इट्स टाइम फॉर
0: मस्ती सॉन्ग ऑफ द आवर.

0: They were not chosen. They were created.
1: इसकी माँ का नाम जानकी था, हम इसे सीता बुलावेंगे.
0: Alpha. The newest chapter in the YRF spy universe.
2: पर इस बार सीता आज लंका खुद जलाने आई.
0: आलिया भट्ट एंड शर्वरी इन इंडियाज फर्स्ट फीमेल लेड एक्शन स्पेक्टिकल वेयर एवरी डिसीजन कुड बी देयर लास्ट.
3: अल्फा प्रोग्राम उसका जुनून है और जो भी उसके रास्ते में आता है वो उसे मार देता है.
0: Born to fight, built to survive. Alpha, releasing 3rd July island wide at the cinemas near you. Brought to you by Home Screen Entertainment.
4: Trending song number 17.

0: And I did tell you about this film last week when we were on Masti Top Charts. This is Renuka with you, Radio Masti 24/7. And of course, you guessed it right. Masti Top Charts, Friday se lekar aaj Thursday ko, aakhir kyun kyun kyun?
1: From rocking the charts to ruling the weekly countdown, join us on Masti Top 20.
0: Alright, so josh mein rehne ke liye bilkul hum yahan hain na. इनफैक्ट मैं अभी बैठे बैठे इतना ज्यादा मेरे हाथ पैर हिलते रहते हैं कि मैंने सोचा इंस्टाग्राम लाइव करके देखती हूँ कि यार चल भी रहा है सब कुछ, की ठीक ठाक क्या चल रहा है. तो वहां पर बस एक सुमित्रा ने ज्वाइन किया और मैंने कहा भाई बहुत खुशी हुई आपसे मिलकर, बड़े दिनों से आपका तो नाम मैंने कभी देखा ही नहीं है. सो शी जस्ट सेड अ लिटिल बिट फ्यू वर्ड्स हियर एंड देयर, एक्सचेंज्ड वर्ड्स विद हर एंड देन आई सेड ओके बाय बाय, बैक टू द एयरवेव्स. जी हाँ, आप जानते हैं एक बड़ी ताजा खबर कुछ ऐसी आई है कि 52 साल, जी हाँ 52 ईयर्स के बाद में सलमान खान हैज decided to move from Galaxy Apartments in Bandra. आप सोचिए 5 decades, जी हाँ 50 साल से भी ज्यादा ये घर उनका एड्रेस रहा है. एंड डिस्पाइट बींग वॉट एवर ही हैज अचीव्ड इन द लास्ट 50 ईयर्स, दिस गाय कंटिन्यू टू लिव इन द 1 BHK इन बांद्रा गैलेक्सी अपार्टमेंट्स. क्यों? गान नंबर 16 कमिंग अप नेक्स्ट. आपने ये फिल्म देखी कि नहीं देखी? आई गई इस पूरी की पूरी सीरीज का ना ये जिनी वेड्स सनी का आने का भी पता नहीं लगता और जाने का भी पता नहीं लगता. But on Radio Masti 24/7 is about 5:38 by the studio clocks. यहाँ पर मैं आपको बता रही थी कि भाई खान फैमिली जो कि सलमान खान के सुपरस्टारडम के पीछे हमेशा रहता है, the landmark that millions of fans have visited just to catch a glimpse of सलमान खान, जी हाँ अपनी बालकनी से, अब वो finally after 52 years he's moving out of his iconic apartment जहाँ पर उन्होंने मतलब कितने ही दिन कितनी ही रातें बिताई है, पूरी पूरी अपनी childhood बिताई है. So he's getting very emotional and I understand the reason for that is his security. जी हाँ, जैसे कि हम जाते हैं लॉरेंस बिश्नोई गैंग जो कि हमेशा से हमारे सलमान भाई के पीछे कुछ ना कुछ चली रहा है. So because of safety and security, the threat to his life, well, he has been asked to move into a more secure place. तो भाई उसी के साथ में नहीं दिखेंगे गैलेक्सी अपार्टमेंट में अब ये 55. This is he began, you know, जो सलीम खान है जब वो इस घर में शिफ्ट हुए थे ना तो he started 55 rupees a month shared room और उसके बाद 2 floors गैलेक्सी अपार्टमेंट के खरीदने के बाद में आज ये सारे के सारे अपने इस मुकाम पे. What an amazing growth story, what a success story that is. Up next, Gana number 16.
2: Hit us on the gram. It's Radio Masti 24/7. And don't forget to like our ever buzzing Facebook page, Radio Masti 24/7 Singapore.
3: Check it out.
2: Trending song, number 16.

0: They were not chosen. They were created.
1: उसकी माँ का नाम जानकी था, हम इसे सीता बुलावेंगे.
0: Alpha, the newest chapter in the YRF spy universe.
2: पर इस बार सीता आज लंका खुद जलाने आई.
0: Alia Bhatt and Sharvari in India's first female-led action spectacle, where every decision could be their last.
3: Alpha program उसका जुनून है, और जो भी उसके रास्ते में आता है, वो उसे मार देता है.
0: Born to fight, built to survive. Alpha, releasing 3rd July island-wide at the cinemas near you. Brought to you by Home Screen Entertainment.
4: बताऊंगी आपको शर्वरी के बारे में भी, क्योंकि लग रहा है कि आजकल जहां देखो हर फिल्म में शर्वरी ही शर्वरी है. ऐसे कौन से बेर चख लिए इस शर्वरी ने कि वो बस हर जगह राम राम यही दिखती है. ऑन रेडियो मस्ती गाइस, आई गॉट टू टेल यू अबाउट अल्फा व्हिच इज रिलीजिंग इन सिंगापुर. जी हाँ, कल ही के दिन में NC-16 है इसकी रेटिंग. एंड दिस इज अ नैरेटिव अराउंड अल्फा, मतलब कि ऐसी लड़की, ऐसी फीमेल लेड फन पॉपकॉर्न एक्शन स्पेक्टिकल YRF के स्पाई यूनिफॉर्म यूनिवर्स से सबसे पहले आप देखने वाले हैं इस फ्रेंचाइज का पहला फीमेल लेड स्पाई यूनिवर्स. जी हाँ, एब्सोल्युटली एक ऐसा थ्रिलर जिसके बस अब रिलीज होने में सिर्फ कुछ ही घंटे बाकी रह गए हैं. सो वेल, व्हाट आई डू वांट टू टेल यू इज दैट आलिया भट्ट इज इन एन अमेजिंग रोल इन दिस फिल्म. एंड एट द सेम टाइम ऑफ कोर्स एडवांस बुकिंग शुरू हो चुकी है पूरी दुनिया में जहां जहां रिलीज हो रही है ये फिल्म. अल्फा ने दिखाए हैं बहुत ही इनकरेजिंग से मोमेंटम को प्री सेल्स में. जी हाँ, और इंडस्ट्री ने ट्रैक किया है कि ऑलरेडी 1.5 करोड़ रुपए से भी ज्यादा एडवांस बुकिंग्स हो चुकी हैं. वेल, सिंगापुर में क्या हाल है? वेल, आई कैन टेल यू इट इज अ GV एक्सक्लूसिव फिल्म गाइस, सो गो एंड वॉच इट दिस वीकेंड. एंड ऑफ कोर्स अगली बात ये कि जब आप देख लेंगे इस फिल्म को, आप वो वाली टिकट्स हमको भेज सकते हैं. एंड क्या पता कि आप उस लकी विनर में से हो जिसके पैसे हम रीइंबर्स कर दें, तो फ्री हो जाएगी आपकी ये फिल्म. आई एम टॉकिंग अबाउट अल्फा. द फर्स्ट 10 टिकट्स टू सेंड देयर स्टब्स टू अस विल गेट बिल्कुल पूरे के पूरे पैसे वसूल एंड रीइंबर्स. सो वॉच अल्फा एंड लेट अस नो कैसी लगी आपको. फिलहाल के लिए अगला गाना कमिंग अप इज अ ब्यूटीफुल फ्लैशबैक सॉन्ग ऑन मस्ती 24/7 और चल रहा है मस्ती टॉप चार्ट्स.
5: Bollywood Flashback.

0: अब रेस सिर्फ स्पीड की नहीं दिमाग की भी है।
1: मस्टी मीडिया नेटवर्क सिंगापुर प्रेजेंट्स द लायन सिटी चैलेंज। Singapore's smartest game show, where knowledge wins. And you too. To participate, text the Lion City Challenge to 9151-8963.
2: Absolutely. Lion City Challenge में तो आप हमको करते ही रहते हैं टेक्स्ट, लेकिन फिलहाल के लिए इतने लोग नहीं हैं जिनको सिलेक्ट किया गया है. क्यों? Well, because I think आप लोग ना थोड़ा सा मेहनत कम कर रहे हैं. But on radio, Masti 24/7 ये वाला शो Lion City Challenge के बारे में नहीं है. It is about Masti Top Charts.
3: From rocking the charts to ruling the weekly countdown, join us on Masti Top 20.
2: Masti Top 20 तो है एक साइड पर, लेकिन टॉप के लोगों की बात करते हैं हम दूसरी साइड पर. और इस समय आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट धुरंधर. जी हाँ, एब्सोल्युटली धुरंधर ऑल द वे. इमेजिन हमजा अली. जी हाँ, उसको बोले कोई हमजा सान. जस्ट थिंक अबाउट इट. आई एम टॉकिंग अबाउट द रिलीज ऑफ धुरंधर इन जापान. जी हाँ, सोचिए सारी की सारी फिल्म को डब किया गया जापानीज में, तो हमजा सान ही हुए ना. तो हमजा सान जो है उन्होंने एक मैसेज दिया है जापानीज लोगों के नाम. जी हाँ, धुरंधर की जापान की जो रिलीज है, इट कम्स एट अ टाइम जब भारत में रणवीर सिंह ऑलरेडी हेडलाइंस बना रहे हैं फॉर हिज कॉन्ट्रोवर्शियल एग्जिट फ्रॉम डॉन 3. जी हाँ, बहुत सारे रिपोर्ट्स के बाद में कुछ ऐसा पता लगा कि जो रणवीर सिंह है वो इस समय निकले हैं उस फिल्म से बिकॉज ऑफ क्रिएटिव डिफरेंसेस विद द मेकर्स. लेकिन कुछ लोगों ने ये भी कहा कि रणवीर काफी दुखी थे विद द रिपीटेड डिलेज इन प्रोडक्शन एंड द एब्सेंस ऑफ अ लॉक्ड फाइनल स्क्रिप्ट. तो उन्होंने कहा, भाई ऐसा है कि मैं धुरंधर के बाद एक ऐसी पीक पर पहुंच चुका हूं जहां कोई खान कभी नहीं पहुंच पाए हैं, एंड आई डोंट वांट टू लूज इट ओवर वन फिल्म. ऑलराइट, एंड आई थिंक दैट्स द राइट थिंग टू डू, इजंट इट? लेकिन सच्चाई क्या है ये हमें फिलहाल क्या ही पता है. जब शुरुआत में लग रहा था कि कुछ कास्टिंग चेंज और बिकॉज धुरंधर की वजह से रणवीर सिंह का दिमाग काफी ऊंचा हो गया, ही डिसाइडेड मैं ये छोटे मोटे डॉन 3 टाइप के रोल नहीं करूंगा. लेकिन पता कुछ ऐसा लगा कि ही जस्ट वॉकड आउट ऑफ इट एंड कॉज्ड अ लॉट ऑफ लॉस टू द एक्सएल एंटरटेनमेंट व्हिच इज हमारे फरहान अख्तर की प्रोडक्शन कंपनी. 45 करोड़, जी हाँ, 45 करोड़ रुपीज इन कॉम्पनसेशन डिमांड की गई थी. एंड द फेडरेशन ऑफ वेस्टर्न इंडिया सिने एम्प्लॉई, उन्होंने इशू किया नॉन कोऑपरेशन का डायरेक्टिव अगेंस्ट द एक्टर, जो कि इस समय रिवोक हो चुका है. तो वेल, बाल भी बांका नहीं कर पाया कोई भी. लेकिन पता कुछ ऐसा लगा है कि अब जापानीज रिलीज, जी हाँ, एब्सोल्युटली अराउंड द कॉर्नर. और हमारे जो धुरंधर हैं उन्होंने जापान में सभी लोगों को कहा है अ वार्म हेलो एवरीवन. जी हाँ, धुरंधर रिलीज हो रही है इमर्सिव सिनेमैटिक एक्सपीरियंस के साथ में, ड्रामा इंटेंसिटी ये वो बहुत कुछ. और अब सबसे बड़ी बात ये है कि मैं चाहता हूँ आप सभी एंजॉय करें द बिगेस्ट इंडियन मूवी ऑफ ऑल टाइम्स ऑन द बिग स्क्रीन. लॉट्स ऑफ लव एंड सी यू एट द मूवीज. हम तो आपको सी यू करेंगे अगले हफ्ते. फिलहाल के लिए फिल्म में तो मैं नहीं जा पा रही हूँ ना. And that's a beautiful track which is now going to play on Gaana Number 15. This is Rish and साथ में अलका याग्निक. आप जानते हैं अलका याग्निक की आखिरी गाना था जो कि उन्होंने रिकॉर्ड किया था बिफोर शी फेल इल. एंड ऑफकोर्स आज के दिन हम कह सकते हैं शी इज द प्राउड रिसिपियंट ऑफ पद्मश्री. लेकिन फिलहाल के लिए ये गाना कमिंग अप नेक्स्ट ऑन रेडियो मस्ती 24/7. सी यू नेक्स्ट आवर.
1: Hit us on the gram. It's Radio Musty 24/7. And don't forget to like our ever buzzing Facebook page, Radio Musty 24/7 Singapore.
4: Check it out.
5: 10 का 20, 10 का 20, 10 का 20.
6: अरे अरे, अब बस 10 से दिल कहाँ भरेगा.
7: मस्ती टॉप 20 लेकर रेणुका जो आने वाली है.
8: Time to raise the bar.
9: Ramma.
8: Musti Top 20 Bollywood Chart Busters of the Week. Full on Renuka style.
9: Renuka. Oh, oh, oh, my darling.
7: Now, pumping up your Thursday evenings, 5 p.m. onwards, catch the OG Rockstar Renuka with the week's top chart busters.
10: Josh Mera.
1: Trending song number 15.
11: Meri aankhein soti hain.
4: मगर ये दिल जागता है, है मेरी प्यारी चलिया।

बिल्कुल ट्रैक पे होती, रिलीजेस कर रही होती, तो शायद इसको इतना सीरियस और इतना सक्सेस ना मिलता। दिस वाज गाना नंबर 16, जी हाँ, ऑन रेडियो मस्ती 24/7। आप ट्यून हैं टू मस्ती टॉप चार्ट्स और मुझसे पूछा जा रहा है कि आज मैं स्टूडियो में क्या कर रही हूँ, बताती हूँ।

0: दस का बीस।
1: अरे अब बस 10 से दिल कहाँ भरेगा।
2: मस्ती टॉप 20 लेकर रेणुका जो आने वाली है। टाइम टू रेज द बार। रम्मा मस्ती टॉप 20 बॉलीवुड चार्ट बस्टर्स ऑफ द वीक फुल ऑन रेणुका स्टाइल। Now, pumping up your Thursday evenings, 5 p.m. onwards, catch the OG rockstar Renuka with the week's top chart busters.
3: और आपको जोश में रखने के लिए, जी हाँ बिल्कुल, 6 बजने के उस पर भी मैं हूँ रेनुका आपके साथ। दिस इज मस्ती टॉप चार्ट्स। और जितने लोग अभी ढीले ढाले उठ के जरा ट्यून इन कर रहे हैं अपने रेडियो मसी 24/7 ऐप को, तो वेल लेट मी टेल यू गाइस कि आप बहुत लेट हैं। जी हाँ, आप लेट तो हैं ही, क्योंकि शाम के 5 बजे से यहाँ पर काफी गपशप शुरू हो चुकी है। लेकिन साथ ही साथ में आप इसलिए भी लेट हैं क्योंकि आपको नहीं पता है कि हमारा शो आज के दिन शिफ्ट हो चुका है। जी हाँ, दिस इज द फर्स्ट वीक गाइस दैट द मसी टॉप चार्ट्स हैव बीन मूव्ड फ्रॉम फ्राइडे टू थर्सडे ओनली बिकॉज ऑफ पॉपुलर डिमांड। As I'm saying, and popular demand ना ही सिर्फ आप लोगों की बट ऑल्सो मेरी, बिकॉज मुझे ऐसा लग रहा था कि फ्राइडे सारे के सारे लोग पार्टियां करने जा रहे हैं और मैं ही यहाँ पर स्टूडियो पर बैठी हुई हूँ। तो मैंने कहा वाई शुड आई, मैं तो बॉस हूं ना, मेरे को अपने आप को याद दिलाना पड़ता है कि सारे टीम छुट्टियों में जा रहा है, अपनी ऐशे कर रहे हैं। और इस सारी की सारी सिचुएशन में हमने लॉटरी निकाली, हमने लॉटरी मतलब हमने चिट्स निकाली और लॉटरी लग गई पुअर मुग्धा की। और मुग्धा जी बिल्कुल फ्राइडे को पेश हो जाएंगी। गाना है तू ही दिस दा। जी हाँ, गाना नंबर 14 था ये पिछले हफ्ते और आज भी 14 नंबर पर टिका हुआ है। एंड फॉलोड बाय अनदर गाना विच इज द सॉन्ग विच वॉज इंट्रोड्यूस्ड लास्ट वीक, अ वेरी वेरी वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ ट्यून, इजंट इट? थोड़ा सा मिडल ईस्टर्न फ्लेवर इसमें। दिस इज कॉल्ड या बाबा संजॉय On Radio Masti 24/7। जी हाँ, कुछ देर पहले मैं आपको बता रही थी कि भाई शर्वरी जो हर जगह में नजर आ रही हैं, तो अभी भी फिलहाल इस टाइम आपको उनके बारे में ज्यादा नहीं बताऊंगी, एक्सेप्ट दिस दैट शी इज ओनली 29 ईयर्स ऑफ एज। आपने फिल्म देखी है, मैं वापस आऊंगा, आपने फिल्म देखी है लव रंजन, या फिर आपने देखी होगी बंटी और बबली 2। जी हाँ, जहां पर उनको मिला था फिल्म फेयर अवार्ड फॉर द बेस्ट फीमेल डेब्यू। अब कुछ याद आया, आई क्वाइट लाइक हर एक्चुअली, शर्वरी वाघ। बस इसके बारे में आके बताऊंगी सम टाइम, फिलहाल के लिए सुनते हैं हमारा अगला गाना नंबर 14 व्हिच इज भूत बंगला के साउंडट्रैक से।
4: Hit us on the gram. It's Radio Musti 24/7 and don't forget to like our ever buzzing Facebook page. Radio Musti 24/7 Singapore.
5: Check it out.
6: Trending song number 14.

0: ही दिसदा। जी हाँ, भूत बंगला के साउंड ट्रैक से आप ये वाला गाना सुन रहे हैं इस टाइम। और आप जानते हैं कि इस गाने में दोनों ही द मेल वॉइस एज वेल एज द फीमेल वॉइस दोनों को ही काफी इक्वल रियल एस्टेट मिला है। जी हाँ, लेकिन ऐसा हमेशा नहीं होता है। जैसा कि आप जानते हैं, इसमें वॉइसेज हैं अरिजीत सिंह की और साथ में निकिता गांधी की। और निकिता गांधी ने हाल ही में ये बात कही कि भाई ये बड़ा ही कैची गाना है, मुझे बहुत मजा आया, क्योंकि आजकल हो कुछ ऐसा रहा है कि हर गाने में दोनों ही मेल और फीमेल वॉइस एक्चुअली बराबर में नहीं होते, बट दिस वन आई एक्चुअली एंजॉय इट बिकॉज इट्स वेरी रिफ्रेशिंग एंड इट्स वेरी इंडियन एंड इट्स अ वेरी क्यूट बैंटर बिटवीन द बॉय एंड द गर्ल। इट्स Certainly is a beautiful track playing up next on Masti 24/7 top charts is of course gaana number 13. Stay tuned.
1: They were not chosen. They were created.
2: Uski maa ka naam Jaan ki tha. Hum isse Sita bulaenge.
3: Alpha.
1: Alpha. The newest chapter in the YRF spy universe.
4: पर इस बार सीता आज लंका खुद जलाने आई।
1: आलिया भट्ट एंड शर्वरी इन इंडियाज फर्स्ट फीमेल लेड एक्शन स्पेक्टिकल वेयर एवरी डिसीजन कुड बी देयर लास्ट।
3: अल्फा प्रोग्राम उसका जुनून है और जो भी उसके रास्ते में आता है वो उसे मार देता है।
1: बोर्न टू फाइट बिल्ट टू सर्वाइव। अल्फा रिलीजिंग 3rd जुलाई आइलैंड वाइड एट द सिनेमास नियर यू। ब्रॉट टू यू बाय होम स्क्रीन एंटरटेनमेंट।
5: Trending song, number 13.

0: अरे बाप रे, इस गाने का तो वीडियो देखने ही लायक है। जी हाँ बिल्कुल, द बेली डांस एंड द एरोबिक डांस दैट नोरा फतेही इज एब्सोल्युटली फेमस फॉर। शी हैज शोन द मूव्स इन दिस गाना एंड ऑफ कोर्स द सेम टाइम यू गॉट वॉच आउट फॉर द वोकल्स गाइस। दिस इज एन अमेजिंग ट्रैक इंडीड। रेडियो मस्ती 24/7 जिसे कहते हैं ना पार्टी एंथम, वही बनता जा रहा है ये वाला गाना या बाबा। और संजॉय का ये टाइटल, ये ट्रैक है, टोटल सिंगल रिलीज है। जी हाँ, इट्स नॉट अ पार्ट ऑफ एनी फिल्म बट जल्दी ही बन जाएगा आई एम श्योर। नोरा फतेही के बारे में बात करें तो शी इज 34 इयर्स ऑफ एज। जी हाँ, द कनेडियन सिंगर डांसर एक्ट्रेस जो कि भारत में आने के बाद ही उन्होंने हिंदी बोलनी सीखी है। बाय द वे, शी ऑल्सो वर्कड इन तेलुगु एंड मलयालम सिनेमा। व्हाट एन अमेजिंग डांसर। बाकी एक्टर एक्टर के बारे में मैं कुछ नहीं कहना चाहती। रेडियो मस्ती 24/7, इट्स अबाउट 6:14 बाय द स्टूडियो क्लॉक एंड इट्स टाइम फॉर मस्ती सॉन्ग ऑफ द आवर।
1: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव, अ पार्ट ऑफ मस्ती मीडिया नेटवर्क सिंगापुर। चेक इट आउट।
2: इट्स टाइम फॉर मस्ती सॉन्ग ऑफ द आवर।

0: और खबर मिली है कि दुनिया में लोग फार बॉटल में खरीद रहे हैं।
1: क्या लोगों के पास पैसे ज्यादा है या दिमाग कम? मस्ती मैडनेस, जहां न्यूज भी होती है गैस्ट्रोनॉमिकल।
2: Download Radio Musti 24/7 app to call us instantly or email, WhatsApp, text us from the app. Josh Trending song number 12.

0: आपकी नॉलेज आपकी जीत।
1: मस्टी मीडिया नेटवर्क सिंगापुर प्रेजेंट्स द लायन सिटी चैलेंज। Singapore's smartest game show, where knowledge wins. And you too. To participate, text the Lion City Challenge to 9151-8963.
2: Alright, on Radio Mossy 24/7, this is Renuka with you. जी हाँ, अभी आप सुन रहे थे गाना नंबर 12, which was तेरा हो जाऊं है जवानी तो इश्क होना ही था.
3: From rocking the charts to ruling the weekly countdown, join us on Masti Top 20.
2: A very average film on the box office, I would say 50 crore kamake. Ye film kab aayi kab gayi pata bhi nahi laga. Lekin Varun Dhawan and Kriti Sanon, the way they groove to this gana, that video has definitely won many hearts. Radio Mossy 24/7 per Mossy Top Charts on a Thursday rather than a Friday. From here on, guys, please do take note in your diaries. Well, itna bhi main aapko batana chahungi ki social media par ye wala gana absolutely hangama ban chuka tha, because Kriti Sanon and Varun Dhawan bahut time ke baad mein fun filmed evening ke liye reunite hue the, and they left fans absolutely excited jab un dono ne is gaane pe dance kiya. Ji ha, viral ho gaya ye wala clip, and the fans were reminded of their chemistry and their bond. और उसी के बाद में इंस्टाग्राम हैंडल्स पर वरुण और कृति ने दोनों ने वीडियो शेयर किया, और साथ ही में दे वर डांसिंग ऑन दिस. नूपुर सैनन, स्टैन बेन एंड वरुण शर्मा, जी हाँ, उन्होंने भी ज्वाइन किया तेरा हो जाऊं. व्हाट अ ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल ट्रैक इंडीड. ऑन रेडियो मस्ती गाइस, द नेक्स्ट गाना दैट यू गोना लिसन टू इज गाना नंबर 11, और ये गाना नंबर 11 उस फिल्म का है जो कि हमने सोचा था बहुत कुछ कर जाएगी, लेकिन शायद नहीं. Yeah, that is Cocktail 2 ke soundtrack se number 11 coming up next, and followed by gana number 10, which is
4: jinni soni lagdi hai mainu kise hor na lagke,
2: pati patni aur wo do.
4: Jinni soni lagdi hai mainu kise.
2: Chaliye sunte hain back to back, and I will be back with some lot of masti masala, definitely Bollywood ka masala, coming up next on Radio Masti 24/7, 6:23. Stay tuned.
1: Hit us on the gram. It's Radio Masti 24/7, and don't forget to like our ever buzzing Facebook page, Radio Masti 24/7 Singapore.
5: Check it out.
1: Trending song number 11.

0: अच्छा सुनो जरा, ग्रोसरी ना खत्म हो रही है तो 1 kg आटा,
1: हाँ जी जी,
0: आधा kg मसूर दाल,
1: जी जी,
0: काजू किशमिश, ओ हाँ अरे वो नमकीन भी खत्म हो रहे हैं,
1: जी जी।
0: आर यू इवन लिसनिंग या ऐसे ही जी जी किए जा रहे हो?
1: अरे डार्लिंग व्हाई टू फियर व्हेन जी जी मार्ट इज देयर।
0: क्या जी?
1: जी जी, जी जी मार्ट, योर पर्सनल ग्रोसर। जस्ट लॉग ऑन टू ggmartonline.com, ग्रोसरी ऐड टू कार्ट करो, चेकआउट करो और ग्रोसरी एट योर डोरस्टेप।
0: वाह जी क्या बात जी।
1: ऑर्डर टुडे फ्रॉम जीजी मार्ट, योर पर्सनल ग्रोसर।
2: Trending song number 10.

0: वो लड़की है यहाँ रेडियो मस्ती 24/7 पर। जी हाँ बिल्कुल, मैं यही हूँ।
1: वो लड़की है यहाँ,
0: यही तो मैं कह रही हूँ, वो लड़की है यहाँ और आप हैं कहाँ। इट्स अबाउट 6:33 बाय द स्टूडियो क्लॉक। रेडियो मस्ती 24/7 पर चल रहा है मस्ती टॉप चार्ट्स एंड दिस इज योर गर्ल रेणुका। जी हाँ, अभी अभी आप जो गाना सुन रहे थे वो लड़की है कहाँ, और मैंने कहा मैं तो यही हूँ, मैं तो बिल्कुल यहीं पर हूँ। तो फिर दिल चाहता है एक ऐसी फिल्म जिसका इस समय 25वां साल चल रहा है। कैन यू बिलीव इट, टाइम एब्सोल्युटली फ्लाइज गाइस। एंड द एल्बम जो कि गाना आप अभी सुन रहे थे, इसका म्यूजिक सारा कंपोज किया था शंकर एहसान लॉय ने। जी हाँ, जिनको अमर अकबर एंथनी ऑफ म्यूजिक इंडस्ट्री भी कहा जाता है। वेल यू नो व्हाट, 10 दिन का ब्रेक लेके ये लोग खंडाला गए थे रितेश सिद्धवानी के घर पे। जी हाँ, दैट इज द प्रोड्यूसर रितेश सिद्धवानी। वहां पर इन्होंने सोचा था ये म्यूजिक पे काम वाम करेंगे एंड ऑल दैट। एंड देन उसके बाद इन्होंने 6 गाने पूरे उन्हें 3.5 दिन में, जी हाँ 3.5 days में दे फिनिश्ड कंपोजिंग ऑल 6 गानाज ऑफ दिस फिल्म दिल चाहता है। एंड रिकॉर्डिंग्स नहीं हुए थे बट कंपोजिशंस बिल्कुल तैयार थे। उसके बाद क्योंकि ये लोग 10 दिन के ब्रेक पे तो गए थे, तो इन्होंने कहा बाकी के 6.5 दिन हमने बैठकर सिर्फ और सिर्फ रिलैक्स किया, खाया पिया एंड वी जस्ट स्पेंड टाइम टुगेदर। सो इट वॉज बेसिकली द दिल चाहता है वाली कहानी की बंदे बाहर जा रहे हैं, पार्टी वार्टी कर रहे हैं, काम भी होता रहेगा, ऐसी क्या बात है। एंड Of course, the only twist was that the title track, Dil Chahta Hai, जी हाँ, वो वाला जो गाना था, it was composed for a film called जाने क्यों लोग प्यार करते हैं। लेकिन कहते हैं उस टाइम पर हमने बस सोचा इसको यहीं पर फिट किया जाए because that's where it fits beautifully and beautiful it certainly was, guys. On Radio Masi 24/7 giving you updates and छोटे-छोटे snippets and gossip from behind the scenes is your girl Renuka. Of course, as I take you through the next ganas right till number 1 of Masti Top Charts. That is गाना नंबर 9 followed by नंबर 8 जो पहली बार एंट्री मार रहा है। माँ बहन जी हाँ, माँ बहन के साउंडट्रैक से वाला गाना है। लेकिन मैं आपको एक बार बताना चाहती हूँ, आपने कुछ नोट किया है द गानाज दैट वी आर राइट नाउ प्लेइंग, राइट, एक के बाद एक फॉर सम रीजन दे आर ऑल रीमेक्स जो पहले गाने आ चुके हैं। ऊंचा लंबा कद जो मैं चलाने वाली हूँ, या धक धक चलाने वाली हूँ, या इससे पहले भी हमने जो गाने चलाए हैं, लॉट ऑफ देम हैव एक्चुअली ऑलरेडी कम इन वन फॉर्म और द अदर किसी और फिल्म में पहले। क्या बात है, कहाँ गई सारी की सारी क्रिएटिविटी। हाँ, क्या होगा इस दुनिया का।
2: रेडियो मस्ती 24/7 डाउनलोड रेडियो मस्ती 24/7 ऐप टू कॉल अस इंस्टेंटली और ईमेल व्हाट्सएप टेक्स्ट अस फ्रॉम द ऐप। ट्रेंडिंग सॉन्ग नंबर 9।

आपको मालूम है जब भी कोई मुझे ऐसे मैसेज लिखता है ना, तो मुझे लगता है कि यार इनको ना लव स्टोरी और कयामत से कयामत तक और इस तरह की फिल्में बहुत पसंद हैं, क्योंकि ये मैं को ना हम लिखते हैं जी। जैसे शोभा ने मुझे अभी भी लिखा, वी आर ऑल्सो हियर, तो मैंने कहा यार ये वी क्यों लिख रही है, अच्छा व्हाट शी मींस इज हम भी तो यही हैं। बहुत बढ़िया बात है शोभा, लेकिन आपके साथ कौन है ये भी तो बता दीजिए, क्योंकि पढ़ के कि आप बहुत सारे लोग सुन रहे हैं, आप दो लोग सुन रहे हैं, मेरा तो दिल धक धक। माँ बहन के साउंड ट्रैक से, जैसे कि मैंने कुछ देर पहले आपको बताया, गाना नंबर 8 कमिंग अप नेक्स्ट ऑन मस्ती टॉप चार्ट्स, फॉलोड बाय ब्यूटीफुल रेट्रो बाय द वे, जो कि बहुत प्यार से आपको कुछ सुनाना चाहता है। क्या सुनाना चाहता है ये तो वो गाना आके ही आपको बताएगा, विच इज दिस वन। You know what I absolutely love? What I absolutely love about Masti Top Charts is कहाँ एक तरफ पूरे के पूरे latest गाने चलते हैं और दूसरी तरफ इतना contrast में इस तरह का music आता है, that totally makes your evening. It definitely makes my evening, guys. Radio Masti 24/7 पर। शोभा का कहना है आप और मैं बातें बनानी तो ना इनसे सीखे कोई। Trending song number 8.

0: सम स्टोरीज आर इजी टू टेल, पर कुछ कहानियां दिल के अंदर ही रह जाती हैं। एक छोटी सी बात पर पेरेंट्स से दूरी, एक प्यार जो कभी कह नहीं पाए, या वो करियर डिसीजन जो आज भी रातों की नींद चुरा लेता है। ऑन मस्ती मीडिया नेटवर्क, वी आर ओपनिंग अ सेफ स्पेस, डियर मस्ती, दिल से, जहां आप लिख सकते हैं वो सब जो आप कह नहीं पाते। हर हफ्ते हम पढ़ेंगे आपके अनोनिमस लेटर्स, और कभी कभी एक गाना कह देता है वो बात जो लफ्जों में नहीं होती। बिकॉज समटाइम्स रेडियो पर बैठा एक अनजाना इंसान आपको दुनिया से ज्यादा समझ लेता है। सो राइट टू अस, डियर मस्ती, दिल से।
1: एंड एट दिस पॉइंट गाइस, आई डू वांट टू टॉक अबाउट डियर मस्ती दिल से। आप जानते हैं, एक ऐसा शो बन चुका है ये वाला, जो कि वाकई दिल से आपके दिल तक ऐसे पहुंचा है कि सबके दिल वहीं के वहीं अटके रह जाते हैं कि कब है ये शो। एंड एक्चुअली एवरी ट्यूजडे इवनिंग वी हैव सो मेनी पीपल ट्यून्ड इन जस्ट टू लिसन टू दूसरों की जिंदगी में क्या हो रहा है, नॉट रियली, लेकिन टू फिगर आउट कि भाई ये जो चल रहा है दुनिया में, सबके मन में, ये कैसे इतने ब्रेव होके रेडियो पर शेयर कर लेते हैं। तो लेट मी टेल यू गाइज दैट डियर मस्ती दिल से इज नॉट जस्ट अ शो विच जस्ट शेयर्स योर फीलिंग्स और व्हाट्स गोइंग ऑन इन योर लाइफ, बट इट शेयर्स ऑल दैट विदाउट आपका नाम लिए। तो इसीलिए वो बात बिल्कुल दिल से निकाल दीजिए कि आपके जिंदगी में क्या चल रहा है, वो किसी को भी पता होगा, बिकॉज हमारी टीम को भी नहीं पता होता है कि हम किसके बारे में बात कर रहे हैं। सो इफ यू थिंक दैट यू वांट टू राइट समथिंग दैट इज हैपनिंग इन योर लाइफ, दैट इज ट्रबलिंग यू, दैट इज काइंड ऑफ गोइंग ऑन इन योर माइंड, तो बिल्कुल हमसे शेयर कीजिए। मैंने तो सबको आसान तरीका भी बता दिया। अगर अपना नंबर नहीं बताना चाहते हो, अपना नाम नहीं बिल्कुल पता लगाना चाहते हो, तो फिर एक नया सा जीमेल अकाउंट खोल लो और वहां से हमको ईमेल भेज दो। वी विल नेवर गेट टू नो कि हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, राइट? सो यू कैन कीप दैट अ सीक्रेट एज मच एज वी विल, लेकिन डेफिनेटली अपने दिल में कुछ चल रहा है ना, जस्ट टॉक इट आउट, टेक इट आउट। एंड यस, अभी अभी जो गाना चल रहा था ना जो कि गाना नंबर 8 था, धक धक करने लगा, वो पता लगा है कि लोग जिम में वेट्स उठा रहे हैं और उसी तरह से धक धक करते करते 10 किलो 10 किलो। जी हाँ, मैं अपनी आरजे अंतरा की बात कर रही हूँ, जो इस समय जिम में है और सोच रही है कि वो वहां पर वेट लूज कर लेंगी हमारे ऐसे रोमांटिक गानों के साथ साथ। हो गया बेटे, हो गया। मैं और स्लो गाना चलाऊंगी इसके बाद में, ताकि तुम्हारी बिल्कुल भी एक्सरसाइज ना हो पाए। मतलब मैं यहाँ बैठूं और तुम पतले हो जाओ ऐसे।
2: बॉलीवुड फ्लैशबैक

चलते चलते के साउंडट्रैक से वाला गाना सुन रहे हैं अभिजीत भट्टाचार्य की आवाज। आई टेल यू आई लव द वॉइस ऑफ दिस कैरेक्टर, लेकिन जब ये अपनी हरकतों पे उतरते हैं और सारी दुनिया को देते हैं गालियां, तो ऐसा लगता है यार ये बंदा इतने शांत गाने कैसे गा सकता है। सीरियसली, इसके अंदर तो इतना ज्यादा भूकाल मचा हुआ है।

यू नो व्हाट आई कैन नॉट इमेजिन अबाउट दिस गाना इज कि चलते चलते के साउंड ट्रैक में 2003 की फिल्म जस्ट इमेजिन एथेंस में, जी हाँ ग्रीस में, यू आर विद शाहरुख खान और वो वाला मतलब सेंटोरिनी का ब्यूटीफुल आइलैंड हो, प्यारा प्यारा मौसम हो, शाहरुख खान तुम्हारे लिए गाना गा रहा हो, आय हाय दोस ब्यूटीफुल कैप्चर्स, ग्रीक आर्किटेक्चर, आसपास भी ग्रीक लड़के बड़े हैंडसम वाले, चलो कोई नहीं शाहरुख खान को देख लेंगे, एंड द लैंडस्केप्स, ओए होए ओए हो।

0: Hit us on the gram. It's Radio Musty 24/7. And don't forget to like our ever buzzing Facebook page, Radio Musty 24/7 Singapore.
1: Check it out.
2: भाई थर्सडे शाम को या किसी भी शाम को जब मैं यहाँ पर बैठकर शो कर रही होती हूँ, somebody tells me, पता है हम जिम में हैं, पता है ये है, पता है वो है, तो मैं कहती हूँ अब तो जबरदस्ती धीरे धीरे वाले गाने चलाओ भाई, जब अपना कोई फायदा नहीं हो रहा इस टाइम, दूसरे का क्यों होने दो। वाह वाह, कितने कितने नेक ख्याल है मेरे।
3: दे आर फ्रेश, दे आर हॉट, दे आर स्पाइसी एंड दे आर हैपनिंग। जॉइन अस ऑन मस्ती टॉप 20।
2: मस्ती टॉप 20 पर आपका एक बार और स्वागत। और इस टाइम जो अगला गाना आने वाला ना, वेल आई कैन टेल यू इट इज प्रोबेबली द स्लोएस्ट गाना ऑफ टुडेज शो, बट इट्स द मोस्ट मीनिंगफुल गाना ऑफ टुडेज शो एज वेल, आई कैन टेल यू दैट। भाई क्या है कि मैं देख रही थी कि फर्स्ट हाफ ऑफ 2026 जो कि अब ऑलरेडी खत्म होने को आया है, जी हाँ, बट इट हैज ब्रॉट सम अमेजिंग हैप्पी न्यूज फॉर द हिंदी फिल्म इंडस्ट्री। जैसा कि आप जानते हैं, कोई ज्यादा बड़ी स्टार स्टडेड फिल्में नहीं आई हैं, लेकिन द वैरायटी दैट हैज कम हैज एक्चुअली वर्क्ड वंडर्स एट द बॉक्स ऑफिस। ये तो बात आप बिल्कुल मानेंगे। जी बिल्कुल, द फर्स्ट हाफ ऑफ 2026 ने डिलीवर करे हैं द मच नीडेड बूस्ट टू द फिल्म इंडस्ट्री, जहां पर ऑडियंसेस ने बैक करी हैं फिल्म्स फ्रॉम अक्रॉस जॉनर्स एंड लैंग्वेजेस एंड बजट्स। मतलब थिएट्रिकल फुटफॉल इतनी स्ट्रॉन्ग, ब्रेकआउट रीजनल सक्सेसेस हैं, रिटर्न ऑफ कॉमेडी है, बहुत कुछ है, और कॉन्फिडेंस आ गया है हमारे को अपने फिल्म इंडस्ट्री के बिजनेस में आफ्टर वॉलेटाइल फ्यू ईयर्स, राइट। आप सोचिए, एडमिशन इस टाइम पर इंडस्ट्री में दे आर अप बाय एटलीस्ट 10%, बॉक्स ऑफिस जो है एस्टिमेट्स हैं 16-17% ज्यादा, एंड डेफिनेटली मल्टीप्लेक्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया फिर से कह रही है यस वी आर इन बिजनेस। लेकिन पेट्रियोटिक ड्रामा से लेके कॉमेडीज एंड रीजनल सिनेमा, सबसे बड़ा सक्सेस जो है वो आया है वेरीड सक्सेसेस से, जी हाँ, जैसे कि बॉर्डर 2, इट हैज इमर्ज्ड एज वन ऑफ द बिगेस्ट हिट्स ऑफ द ईयर। और धुरंधर तो मतलब 2026 को छोड़ो, पता नहीं कितने सालों को पीछे छोड़ के पहुंच गया है आगे। एब्सोल्युटली 1100 करोड़, मतलब किसी ने कभी सोचा था 1100 करोड़ भी कोई चीज होती है? धुरंधर द रिवेंज, और अब वो हमजा अली सान जो पहुंच गए जापान, वो वहां पर और भी ज्यादा नंबर छापने वाले हैं, जी हाँ। लेकिन द बिगेस्ट सरप्राइज सो फार हैज बीन मैं वापस आऊंगा, जी हाँ, 50 करोड़ ये फिल्म ऑलरेडी कमा चुकी है एंड इट इज स्टिल वेरी मच रनिंग। इट इज इम्तियाज अली की मैं वापस आऊंगा डिस्पाइट अ मॉडेस्ट ओपनिंग। मतलब मैं तो यही कहूंगी कि स्ट्रॉन्ग वर्ड ऑफ माउथ, जिसकी वजह से धीरे धीरे धीरे इस फिल्म ने मोमेंटम गेन किया है एंड इट हैज मूव टुवर्ड्स द हिट स्टेटस। एंड इम्तियाज ने ऑफ कोर्स सबके आगे आके ये बात कही है कि भाई मुझे इंडस्ट्री ने ये कहा था कि कुछ कुछ भी हल्का फुल्का बना दो, ऑडियंस बिल्कुल कोई भारी चीज नहीं देखना चाहती, इमोशनल मत करो उनको, लेकिन मुझे ही लोगों ने गलत प्रूव कर दिया, बिकॉज मुझे लग रहा था ये चलेगी या नहीं चलेगी, एंड आई एम सो ग्लैड that the emotions have hit the chord somewhere.

0: मैं इस गाने के साथ में इस घंटे को खत्म जरूर करूंगी, लेकिन आई प्रोमिस द नेक्स्ट आवर इज गोइंग टू बी फुल ऑफ धमाल। इस टाइम आप सुन लो क्या कमाल है, उसके बाद आप बोलोगे क्या धमाल है, ठीक है ना। रेडियो मस्ती 24/7, दिस इज रेणुका विद यू, एंड ऑफ कोर्स इट्स मस्ती टॉप चार्ट, स्टे ट्यून्ड।
1: ट्रेंडिंग सॉन्ग नंबर 7।

0: charts to ruling the countdown. ये है मस्ती टॉप 20. Now pumping up your Thursday evenings 5 PM onwards. The latest and the brightest. The week's top chart busters.
1: और आपको जोश में रखने के लिए मैंने कहा ना 5 बजे से मैं यहाँ पर आपके बिल्कुल साथ हूँ. रेडियो मसी 24/7 पर चल रहा है मसी टॉप चार्ट्स.
2: दे आर फ्रेश, दे आर हॉट, दे आर स्पाइसी,
1: बट मसी टॉप चार्ट्स पर चल रही हैं उससे भी बढ़कर हमारी और आपकी गॉसिप. जी हाँ, गॉसिप में इस समय मैं आपको लेके चलूंगी राम कपूर के पास. आप जानते हैं राम कपूर? जी हाँ, बिल्कुल जानते हैं आप. वही बड़े अच्छे लगते हैं, बाद में थोड़े छोटे हो गए, मतलब इनकी साइज की बात कर रही हूँ मैं. बट या when he was in बड़े अच्छे लगते हैं, मुझे लगता था वाकई the title is actually about him. Because बड़े लोगों को ये बड़े राम कपूर बहुत ही अच्छे लगते थे. But well, on Radio Masi 24/7 guys, right now I do want to talk about his kiss on screen. आप सोचिए कि हमारे जो TV shows होते हैं उसके अंदर जरा kiss विस के सीन थोड़े कम ही होते हैं. Because logic सारा ये था कि भाई इन फिल्मों इन चीज़ों को देखने वाले TV को देखने वाले सारे के सारे हमारे बच्चे बच्चे होते हैं घर में. इट्स अ फैमिली काइंड ऑफ अ थिंग, राइट? सो उसमें ये किस की क्या जरूरत है. लेकिन नहीं, इन्होंने किया. ही वॉज इन फैक्ट नेशनल टेलीविजन पर पहले एक्टर जिन्होंने ऑन स्क्रीन किस किया है साक्षी के साथ में. बट उसके बाद बाकी तो ड्रामा जो हुआ सो हुआ. इनकी पत्नी के साथ में जो इनका ड्रामा हुआ वॉज वर्थ इट, राइट? ही वॉज टॉकिंग अबाउट द आइकॉनिक ऑन स्क्रीन किस साक्षी तंवर के साथ. एंड देन सडनली घर में हो गया ड्रामा, क्योंकि He was like very surprised कि क्यों मेरी वाइफ गौतमी इतना ड्रामा कर रही है. Because पहले भी किया है 2 बार on camera मैंने लोगों को किस, तो इस बार क्या खास बात है. So गौतमी ने ये कहा था कि भाई by that time I was a young mother, मेरे 2 बच्चे थे, मैं उनका ख्याल रख रही थी. और फिर मैंने कहा ये मेरा पति अच्छा है, मैं घर में ये सारे के सारे काम कर रही हूँ और ये बाहर जाके अपने किस विस करके ऐशे कर रहा है, तो मुझे गुस्सा आ गया. एंड देन मैंने अपने आप को ये कहा कि भाई मैं भी तो एक एक्टर हूँ, मैं ऐसा रिएक्ट क्यों कर रही हूँ. बट आई वॉज possessive and out of love I just kind of informed him later ki aisa kaam mat karo. वैसे भी उसने मेरे को promise किया था वो 2 kisses करने के बाद कि वो फिर से नहीं करेगा. So well, हो जाता है. अरे हो तो जाता ही है. लेकिन सबसे बड़ी बात आगे ये है कि इन्होंने अब जो फिल्म इनकी आने वाली है विच इज लॉकअप 2, जैसे ही राम कपूर ने वो फिल्म साइन करी वैसे ही गौतमी ने कह दिया कि डोंट यू वरी, आई विल नॉट गेट पोजेसिव अबाउट एनीथिंग. जाओ एंड मेक मी एब्सोल्युटली प्राउड. टाइम फॉर अनदर रेट्रो बिफोर वी गेट इन टू द ग्रूव ऑफ मस्ती टॉप चार्ट्स. हमने किया है. चल यार सुनते हैं. सलमान खान गैलेक्सी से शिफ्ट हो रहा है, पता नहीं हेयर स्टाइल भी बदलेगा या नहीं बदलेगा. बट नोबडी कैन बीट तेरे नाम का हेयर स्टाइल, है कि नहीं? रेडियो मस्ती सॉन्ग ऑफ द आवर.
3: इट्स टाइम फॉर मस्ती सॉन्ग ऑफ द आवर.

0: an amazing track, guys. Udit Narayan, Alka Yagnik, 90s ke ye gaane. Oh my God, what an amazing track.
1: Tere naam.
2: Hit us on the gram. It's Radio Musti 24/7. And don't forget to like our ever-buzzing Facebook page, Radio Musti 24/7 Singapore.
3: Check it out.
0: भाई, आई वांट टू आस्क यू समथिंग एट दिस स्टेज. अभी मुझे किसी ने एक मैसेज लिखा और ये बोला कि यार एक सिचुएशन हो गई है. मतलब हम MRT स्टेशन पे थे और वहां पर एक फादर अपनी दो यंग लड़कियों के साथ में, डॉटर्स के साथ में आया एंड दे वांटेड टू गो टू द टॉयलेट. अब टॉयलेट ले जाने के लिए यंग फादर जो है ये उसने एंटर कर लिया लड़कियों वाला, द लेडीज टॉयलेट, राइट. एंड दोनों छोटे बच्चों को, बच्चियों को वो वहां पर लेके गया. नाउ द थिंग इज दैट when he was about to come out, right, there was a man outside jiski wife ko us toilet mein jana tha, and he started making a noise that how dare you as a man enter a lady's toilet. He said, look, I have these 3-year-old twins jinka mere ko dhyan rakhna hai, dono ladkiyon ka, inko main kahan leke jata, to mujhe lana hi tha. And that man kept shouting at him. तो क्या करना चाहिए यार? एक्चुअली इट्स अ वेरी वेरी गुड क्वेश्चन. जब एक फादर अपने छोटी छोटी दो बेटियों के साथ में कहीं बाहर जा रहा है, एंड दोज डॉटर्स नीड टू गो टू द टॉयलेट, तो क्या करना चाहिए उस फादर को? डू यू गाइस हैव अ सॉल्यूशन? दे आर फ्रेश, दे आर हॉट, दे आर स्पाइसी, एंड दे आर हैपनिंग. जॉइन अस ऑन मस्ती टॉप 20. मस्ती टॉप 20 पे अगला गाना जो आने वाला है, वेल आई एम वेटिंग फॉर योर रिस्पॉन्सेज बाय द वे टू द क्वेश्चन आई जस्ट आस्क्ड. लेकिन अगला गाना जो आने वाला है वो है जुलाई 10th की रिलीज, दैट आई एम टोटली लुकिंग फॉरवर्ड टू. जी, बात हो रही है धमाल 4 की. हाँ, अजय देवगन, रितेश देशमुख, अर्शद वारसी एंड जावेद जाफरी. शायद आपको याद होगा, दिस प्रोडक्शन इज बाय अजय देवगन, द कॉमेडी एक्शन फिल्म जिसके अंदर रवि किशन, संजीदा शेख और संजय मिश्रा भी आपको दिखेंगे. पिछली बार मेरे को याद है मैं हॉल में शायद अकेले ही 5 मिनट तक हंस रही होंगी ऑन द सीन जब वो पेंटिंग में से घोड़ा गायब हो जाता है, क्योंकि बेसिकली पेंटिंग रिप्लेस होती है एंड देयर इज जस्ट अ फ्रेम ओवर देयर. तो उसने कहा ये कौन सी पेंटिंग है, एंड द अदर गाय सेड यही तो पेंटिंग मंगवाई थी आपने. तो उसने कहा उस पेंटिंग में तो घोड़ा था, घोड़ा कहाँ गया? तो उसने बोला घास खाने चला गया है. इसीलिए वहां पर सिर्फ ब्लैंक पेंटिंग थी. आई मीन इट वॉज सच अ डम, सच अ स्टूपिड थिंग. लेकिन फिर भी कई बार होता है ना, यू जस्ट डिसाइड कि तुमको कोई दिमाग नहीं लगाना, सिर्फ हंसना है.
4: तैया कैसे बनी गुलौड़ी बिना चटनी, कैसे बनी?
0: जी बिल्कुल, नंबर 6 पर हम चटनी बनाएंगे ऑन रेडियो मस्ती 24/7 एंड ऑफ कोर्स फॉलोड बाय टॉप 5 गानाज ऑफ टुडे. अभी हो रहे हैं 7:12 एंड आई प्रॉमिस यू 8 बजे तक आपको सारे टॉप चार्ट्स पता लग जाएंगे. नो चॉइस, राइट?
2: Trending song, number 6.

0: ओ बेबी, हाँ बीच में तो कहीं ना कहीं ये भी बोला जाता था ऑन रेडियो मसी 24/7 दिस इज मसी टॉप चार्ट्स एंड इट्स विद रेणुका
1: मस्ती टॉप 20 बॉलीवुड चार्ट बस्टर्स ऑफ द वीक फुल ऑन रेणुका स्टाइल.

0: एंड ऑन रेडियो मस्ती 24/7 योर डार्लिंग रेणुका है। नाउ वांट्स टू टेल यू कि भैया जिंदगी में बहुत ज्यादा कठिनाइयां आ गई हैं। अब देखिए ना, थोड़ी देर पहले मैंने एक बड़ा सिंपल सा सवाल पूछा और वो सिर्फ ये कि यार एक फादर अपने दो छोटी छोटी बच्चियों के साथ अगर बाहर घूमने गया है और बच्चियों को टॉयलेट जाना है तो यार वो क्या करे, मतलब क्या करे वो। अब नाउ ही हैज़ टू टेक देम टू द लेडीज, राइट? व्हाट एल्स कैन ही डू? एंड इस केस में वहां पर एक आदमी जिसकी वाइफ जाने वाली थी अंदर लेडीज में, एंड ही सडनली सॉ दैट देयर इज दिस मैन इनसाइड विद द यू नो हूएवर द लिटिल किड्स, ही स्टार्टेड मेकिंग सच अ फस एंड देन दैट गाय वाज सो एंबैरस्ड एंड यू नो पुलिस को बुलाया गया और पुलिस ने कहा कि देखिए उसके पास कोई चॉइस नहीं थी। Obviously he was not saying anything. He just took his little daughters inside, you know. And imagine the impact on the little girls कि उसके डैडी से पुलिस बात कर रहे हैं and all that. So why make such a fuss? Instead आप अपनी वाइफ को बोल सकते हैं कि उसकी हेल्प कर दो और उस आदमी को बोल सकते हैं अब भाई साहब अब बाहर आ जाइए, लेट द लेडीज टेक केयर, है ना? कुछ भी मतलब इंसान कर सकता है, या आप दो मिनट बाहर खड़े हो सकते हैं और कह सकते हैं कि भैया बाहर आ जाओगे तब मेरी वाइफ चली जाएगी। Why make such फस? और यहाँ पर हमारी डियर आरती ने बहुत प्यार से लिखा है कि भाई आस्क द क्लीनर और समवन एल्स टू गार्ड द डोर व्हाइल यू हेल्प द किड्स एंड गेट द जॉब डन, इट्स एज सिंपल एज दैट। लेकिन नहीं जी, हमें तो शौक है शोर मचाना ही हमने, क्योंकि हमारी तो जिंदगी में हमें दूसरा पकड़ा गया है, वो चोर है, तो हम तो मतलब चौधरी बनेंगे ही बनेंगे ना। गाना नंबर 5 कमिंग अप। जी हाँ, इट्स 7:22 बाय द स्टूडियो क्लॉक। मेरी आवाज़ थोड़ी सी भारी टाइप होती चली जा रही है एंड आई हैव नो आइडिया व्हाई। मुझे चाहिए गर्म पानी, लेकिन गर्म पानी ज़्यादा मुझे चाहिए गर्म गर्म खबर जो मैं इस समय आपको और देना चाहती हूँ, और वो ये है कि रवीना टंडन ने बड़ी ही काम की बात करी है, ठीक है? व्हाट शी सेड इज दैट भाई मतलब बॉलीवुड कॉमेडीज, क्योंकि ह्यूमर जो 90s में था इट वाज अनइनहिबिटेड एंड इट वाज अनअपोलोजेटिक। कोई भी इंसान ना मतलब ये नहीं है कि दूसरे को ऑफेंड कर दिया, उसने केस कर दिया, नाराज हो गए, मोटे को मोटा नहीं कह सकते, काले को काला नहीं कह सकते, गोरे को गोरा नहीं कह सकते, किसी को कुछ नहीं कह सकते आज के जमाने में, राइट? क्योंकि सब ऑफेंड हो जाते हैं। सो रवीना वॉज बेसिकली जस्ट सेइंग दैट बड़े मियाँ छोटे मियाँ आंटी नंबर 1 दूल्हे राजा परदेसी बाबू इस तरह की फिल्मों में उन्होंने काम किया एंड शी सेड कि हम तो मजाक उड़ाते थे यार खुल के और लोग हंसते थे, बट नाउ द लैंडस्केप हैज चेंज्ड ड्रास्टिकली, मेकिंग पीपल लाफ विदाउट समवन गेटिंग ऑफेंडेड प्रोबेबली इट्स द अल्टीमेट टाइट रोप वॉक टुडे। बड़ा ही मुश्किल है, लेकिन 90s में बड़ा आसान था, मतलब हम लोग अच्छे टाइम पर निकल गए एंड दैट इज सो ट्रू। आप लोग वाकई अच्छे टाइम पर निकल गए। बट ऑन रेडियो मस्ती 24/7 गाइस, एज एवरीथिंग इज कॉम्प्लिकेटेड इन लाइफ सो डज आवर शो। कमिंग अप नेक्स्ट इज गाना नंबर 5।
1: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव, अ पार्ट ऑफ मस्ती मीडिया नेटवर्क सिंगापुर। चेक इट आउट। Trending song number 5.

0: सम स्टोरीज आर इजी टू टेल, पर कुछ कहानियां दिल के अंदर ही रह जाती हैं। एक छोटी सी बात पर पेरेंट्स से दूरी, एक प्यार जो कभी कह नहीं पाए, या वो करियर डिसीजन जो आज भी रातों की नींद चुरा लेता है। ऑन मस्ती मीडिया नेटवर्क, वी आर ओपनिंग अ सेफ स्पेस, डियर मस्ती, दिल से, जहां आप लिख सकते हैं वो सब जो आप कह नहीं पाते। हर हफ्ते हम पढ़ेंगे आपके अनोनिमस लेटर्स, और कभी कभी एक गाना कह देता है वो बात जो लफ्जों में नहीं होती। बिकॉज समटाइम्स रेडियो पर बैठा एक अनजाना इंसान आपको दुनिया से ज्यादा समझ लेता है। सो राइट टू अस, डियर मस्ती, दिल से। Shows don't just play, they stay with you. And when our listeners ask for more, we bring them back. Encore shows by popular demand. Relive the music, the moments, the magic. Only on Radio Masti 24/7. Check the app menu for Encore show timings.
1: Radio Masti 24/7 Live, a part of Masti Media Network Singapore. Trending song number 4.

0: मस्कारा, तुम्हारा टेस्ट होने वाला है। सपना जी ने क्लियरली बोल दिया है कि वो जाके तुम्हारा वीडियो देखेंगी और डिसाइड करेंगी आर यू वर्थ इट और यू आर नॉट। लग गई तुम्हारी।
1: From rocking the charts to ruling the weekly countdown, join us on Masti Top 20.
0: Masti Top 20 पे आप तो हमें join कर ही चुके हैं, and in case you are confused, it is not Friday बेटा, कल Saturday नहीं है, कल office जाना है आपको, alright? Just the show का दिन बदला है, आपकी जिंदगी में और कुछ नहीं बदला है। So office में जाकर boss को ये नहीं बोल सकते, अरे वो कल top chart सुना तो लगा कि Friday है। नहीं नहीं, हम इल्जाम नहीं लेंगे अपने सिर, alright? On Radio Masi 24/7, guys, the gana you just heard, it's called Mascara. An amazing track it is. Of course, it is a number 4. जी हाँ, इस हफ्ते भी, पिछले हफ्ते भी number 4 पर था ये वाला गाना। इस गाने को lyrics जो हैं लिखे हैं इरशाद कामिल ने, and the singers, जी हाँ, जैसे कि मैंने बीच में कहा, वेदांग रैना और साथ ही में नीलांजना घोष। जी हाँ, दोनों की आवाजें आपने सुनी, एंड ए आर रहमान का म्यूजिक एब्सोल्युटली अमेजिंग। और एक और चीज जिसको मुझे सीरियसली मेरा ध्यान जाता है, इज द फ्लूट। जी हाँ, बांसुरी अश्विन श्रीनिवासन ने वो बजाई है, एंड इट इज एन अमेजिंग गाना कमिंग फ्रॉम द साउंडट्रैक ऑफ मैं वापस आऊंगा। और एक गाना है जो जाने का वाकई नाम नहीं ले रहा, वो भी वापस आता ही रहता है, चाहे हम बुलाएं या ना बुलाएं। साहब, पिछले हफ्ते तो मुझे यहाँ पर लिख के भेज दिया किसी ने कि इसको हम टॉप चार्ट से क्या निकाल सकते हैं, और मैंने कहा ओ बाप रे, इसको हम रिटायर कर देते हैं। तो उन्होंने बोला हम क्यों रिटायर क्यों करें इसको, इज्जत से इसको निकाल फेंको। मैंने कहा पेंशन लेने दो, कहते नहीं हमें इससे पैसे लेने चाहिए। ओ माई गॉड, दैट वॉज वन कॉन्वर्सेशन, आई थिंक इट वॉज विद निकिता इफ आई रिमेम्बर। बट ऑन रेडियो मस्ती 24/7, द नेक्स्ट ट्रैक कमिंग अप इज गाना नंबर 3, विच इज एक्चुअली धुरंधर गहरा हुआ। ये राज कितना गहरा होगा, आपको क्या लगता है?
2: Hit us on the gram. It's Radio Musty 24/7. And don't forget to like our ever buzzing Facebook page. Radio Musty 24/7 Singapore. Check it out. Trending song. Number 3.

भाई अब ऐसा है, जितना भी पैशनेट, जितनी भी ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री दिखा दो, कुछ भी कर लो इस गाने के साथ में, लेकिन फिलहाल निकिता ने फिर से सुन ली है ये बात और वो फिर से इस हफ्ते मुझसे डिसअपॉइंटेड है। अरिजीत सिंह, ये मैसेज तुम्हारे लिए है, वो तुमसे डिसअपॉइंटेड है।

0: I tell you, there are some songs that absolutely touch your soul. चाहे जितने भी टाइम के बाद में जब भी आप सुने उस गाने को, actually it does touch, right? ये है of course पल पल दिल के पास, किशोरदा की आवाज एंड ब्लैक मेल फिल्म से गाना. उफ, what a song.
1: They are fresh. They are hot. They are happening. From rocking the charts to ruling the countdown. Yeah, Musti Top 20. Now pumping up your Thursday evenings, 5 p.m. onwards. The latest and the brightest. The week's top chart busters.
0: अब जोश में तो आपको रखने के लिए हम ही होते हैं ना, तभी तो 5 बजे से अब तक बिल्कुल absolutely आप मेरे साथ यहाँ पे गप्पे शप्पे मार रहे हैं. And of course you're all looking forward to the गाना number 2 and 1 which is gonna play very very soon. बस एक खबर आपको दिए देती हूँ कि भाई अभिषेक बच्चन जी, हाँ 26 साल उन्होंने कंप्लीट कर लिए हैं बॉलीवुड में इस टाइम पर. मुझे तो पता नहीं इनके लॉन्च रीलॉन्च के बीच में देखिए ना 26 साल हो भी गए. एंड अगर इनकी वाकई फिल्मों की बातें करी जाए तो गुरु, युवा, बंटी बबली, साथ ही में ब्लफ मास्टर, मे बी द धूम फ्रेंचाइज, राइट, या बिग बुल कह लीजिए, बॉब विश्वास, 10वीं, घूमर, आई वॉन्ट टू टॉक, मतलब आई डोंट नो वॉट टू टॉक, सीरियसली इस तरह की फिल्म है. Not done really great because obviously we've talked about this several times. उनके घर में ही उनको overshadow करने वाले बड़े सारे लोग हैं. लेकिन चलिए वो सब भी छोड़िए, but I really like the guy and he has been talking about insecurities. जी हाँ, reflection थोड़ी सी करते हुए 26 साल हो गए. उन्होंने कहा कि भाई उस समय मुझे नहीं पता था मुझे क्या करना है क्या नहीं, लेकिन आज definitely मुझे पता है with a lot more conviction, बहुत सी maturity और calmness के साथ में कि नहीं insecurity क्या होती है इस industry में और आज के दिन मुझे क्या करना चाहिए. चलो बेटा, दूर आए, देर आए, दुरुस्त आए, आए तो सही. But on radio Musti 24/7, the next two tracks that I have are गाना नंबर 2 and गाना नंबर 1. तो आप बताइए इन दोनों में से कौन सा होने वाला है आज के दिन में. Cocktail 2 के साउंडट्रैक से बंधु, एंड जैसे धुरंधर का एक गाना दूसरे के साथ कॉम्पीट करता था, वैसे ही कॉकटेल 2 का एक गाना दूसरे से एब्सोल्युटली कर रहा है कॉम्पीट. फिल्म चाहे जैसी भी रही हो लेकिन गाने कॉम्पिटिशन बिल्कुल दे रहे हैं. तो बताइए कौन सा होगा 1 और कौन सा होगा 2. लेकिन मेरे पास तो इतना टाइम नहीं है ना, मुझे तो चलाना ही पड़ेगा इस टाइम पर. तो चलिए गाना नंबर 2 कमिंग अप नेक्स्ट रेडियो मस्ती 24/7 पर.
2: Hit us on the gram. It's Radio Musti 24/7. And don't forget to like our ever buzzing Facebook page. Radio Musti 24/7 Singapore.
3: Check it out.
4: Trending song number 2.

0: अरे माशूका माशूका माशूका ओहो दैट्स ऑल आई हियर राइट नाउ. इनफैक्ट आप जानते हैं कि हाईली सक्सेसफुल रोमांटिक कॉमेडी फिल्म कॉकटेल 2 जी इसकी बातें हो रही हैं. प्रीतम के लिरिक्स, प्रीतम का म्यूजिक एंड द लिरिक्स बाय अमिताभ भट्टाचार्य. ये जो पूरी एल्बम है ना, इट जस्ट हैज अमेजिंग ट्रैक्स मिक्सिंग बीट साइड एनर्जी विद इंटेंस रोमांटिक एंटैंगलमेंट्स. और माशूका की प्लेजरिज्म कॉन्ट्रोवर्सी में ऑब्वियसली प्रीतम ने कहा कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, इट्स जस्ट सिमिलैरिटी इज. लेकिन अरिजीत सिंह ने आगे अपना जादू दिखाया इस पूरी एल्बम में और बंधु 2.0 इम्प्रोवाइजेशन. जी हाँ, यू आर एब्सोल्युटली राइट, टर्न्स आउट टू बी द किलर दिस इवनिंग एज वेल ऑन रेडियो मस्ती 24/7. कमिंग अप इज गाना नंबर एक इन जस्ट अ लिटिल बिट.
1: दे वर क्रिएटेड.
2: उसकी माँ का नाम जानकी था, हम इसे सीता बुलावेंगे.
3: Alpha, the newest chapter in the YRF spy universe.
4: पर इस बार सीता आज लंका खुद जलाने आई.
3: आलिया भट्ट एंड शर्वरी इन इंडियाज फर्स्ट फीमेल लेड एक्शन स्पेक्टिकल वेयर एवरी डिसीजन कुड बी देयर लास्ट.
5: अल्फा प्रोग्राम उसका जुनून है और जो भी उसके रास्ते में आता है वो उसे मार देता है.
3: बोर्न टू फाइट, बिल्ट टू सर्वाइव. अल्फा रिलीजिंग 3rd जुलाई आइलैंड वाइड एट द सिनेमास नियर यू. ब्रॉट टू यू बाय होम स्क्रीन एंटरटेनमेंट.
0: While I remind you one last time guys that you have to watch Alpha this weekend, and अगर आप उन top 10 लोगों में से हैं जो हमें भेज देते हैं अपनी tickets के stubs, then you will get reimbursed for the tickets as well. So हमें बताइएगा, review चाहिए हमें आपसे. And Radio Masti 24/7 पर coming up is गाना number 1. जी हाँ, उसी के साथ साथ रेनुका यहाँ से 9-2-11 और बंधु 2 जो गाना भी आप सुनने वाले हैं उसके बीच में एक बड़ी सी क्यूट सी बात हुई वो बता देती हूँ आपको. रश्मिका मंडना एंड ऑफ कोर्स शाहिद कपूर दोनों जब डांस कर रहे थे, शी स्टॉप्ड, शी इंटरप्टेड द डायरेक्टर मिड सीन और उसने उससे पूछा कि भाई क्या मेरे को दोस्त बनना है या रोमांटिक लीड बनना है, इतना तो बता दो, कैसे रिएक्शन दूं मैं. तो शाहिद ने बड़े आराम से टेंशन को खत्म करते हुए कहा, चल भाई बहन ही बन जाते हैं. Radio Masti 24/7. It is time for me to say goodbye, guys. And I hope you enjoy your Gana number 1 and you enjoyed your Masti top charts. I will see you tomorrow morning on Masti Madness with RJ Anthra. Lekin filhal ke liye yahan se nikalne ka bilkul aapse ijazat chahiye. Have a fantastic rest of the evening, guys. Mwah! Love you all and enjoy this.
6: Trending song.
7: Check it out.
6: Number 1.

0: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव,
1: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव,
2: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव।
3: हाउ टू मेक बेस्ट ऑफ वीकेंड्स दैट ट्रैवल फास्टर देन लाइट। Tune into our Musty Weekends on Radio Musty 24/7 Live, the perfect recipe for you to unwind, keeping body entertainment close to you, anywhere, anytime. Just

0: स्टोरीज आर इजी टू टेल, पर कुछ कहानियां दिल के अंदर ही रह जाती हैं। एक छोटी सी बात पर पेरेंट्स से दूरी, एक प्यार जो कभी कह नहीं पाए, या वो करियर डिसीजन जो आज भी रातों की नींद चुरा लेता है। ऑन मस्ती मीडिया नेटवर्क, वेयर ओपनिंग अ सेफ स्पेस, डियर मस्ती, दिल से, जहां आप लिख सकते हैं वो सब जो आप कह नहीं पाते। हर हफ्ते हम पढ़ेंगे आपके अनोनिमस लेटर्स, और कभी कभी एक गाना कह देता है वो बात जो लफ्जों में नहीं होती। बिकॉज समटाइम्स रेडियो पर बैठा एक अनजाना इंसान आपको दुनिया से ज्यादा समझ लेता है। सो राइट टू अस, डियर मस्ती, दिल से।
1: इट्स द बेस्ट ऑफ बॉलीवुड प्लेइंग ऑन रेडियो मस्ती 24/7 लाइव। हैव अ मस्ती भरा वीकेंड।

0: टू रूलिंग द काउंटडाउन, ये है मस्ती टॉप 20। नाउ पंपिंग अप योर थर्सडे इवनिंग्स 5 PM ऑनवर्ड्स, द लेटेस्ट एंड द ब्राइटेस्ट, द वीक्स टॉप चार्ट बस्टर्स।
1: द परफेक्ट रेसिपी फॉर यू टू अनवाइंड। मस्ती वीकेंड्स ओनली ऑन रेडियो मस्ती 24/7 लाइव।

0: थकन चारों ओर है, चलते जाओ, पहुंचता कौन है, चलते बहुत हैं। नई दुनिया के सुंदर बन के अंदर पुराने वक्त के पौधे बहुत हैं, और उन्हीं पुराने वक्त के पौधों की कहानी सुनाएगा समर, जो आज हमारी राहों में छायादार घने पेड़ बनकर खड़े हैं, जिनके होने से सफर की कड़ी धूप भी छांव सी लगती है। लेजेंड्स अचीवर सीरीज में सुनिए मेरे यानी समर के साथ कुछ महान शख्सियतों की जिंदगी की दास्तान, सिर्फ और सिर्फ रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर। जोश में रहो।
1: वीकेंड का मजा विद द बेस्ट ऑफ बॉलीवुड प्लेइंग ओनली ऑन रेडियो मस्ती 24/7 लाइव।

0: बिना फ्लाइट टिकट खरीदे दुनिया का चक्कर लगवाएगा कौन? पेपराजी से भी तेज गॉसिप्स आपको लाकर देगा कौन? क्या बात है, आप तो काफी स्मार्ट निकले। तो सुनिए, सालों से एक टक सिंगापुर तक आपको अपडेट रखने वाली आपकी आरजे नुपुर को मस्ती मॉर्निंग्स पर ट्यूसडे, वेंसडे एंड थर्सडे को ओनली ऑन रेडियो मस्ती 24/7 लाइव। ये है मस्ती मॉर्निंग्स मेरी जान।
1: फॉर शो टाइमिंग्स चेक आउट द रेडियो मस्ती ऐप नाउ।
2: इट्स द बेस्ट ऑफ बॉलीवुड प्लेइंग ऑन रेडियो मस्ती 24/7 लाइव। हैव अ मस्ती भरा वीकेंड।

0: इफ वीकेंड वाज अ गाय,
1: वो आ गया, देखो वो आ गया।
0: इफ वीकेंड वाज अ गर्ल, इफ वीकेंड वाज अ फिल्मी डायलॉग,
2: स्वागत नहीं करोगे आप हमारा।
0: एंड इफ वीकेंड वाज एन ऐप,
3: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव,
4: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव,
5: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव,
6: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव।
0: How to make best of weekends that travel faster than light. Tune into our Musty Weekends on Radio Musty 24/7 Live, the perfect recipe for you to unwind, keeping body entertainment close to you, anywhere, anytime. Your

एक देहाती सर पे गुड़ की भेली बांधे लंबे चौड़े एक मैदान से गुजर रहा था। गुड़ की खुशबू सुन के भिन भिन करती एक छतरी सर पे मंडलाती थी। धूप चढ़ी और सूरज की गर्मी पहुंची तो गुड़ की भेली बहने लगी। मासूम देहाती हैरान था, माथे से मीठे मीठे कतरे गिरते थे और वो जीभ से चाट रहा था। मैंने देहाती, मेरे सर पे ये टैगोर की कविता भेली किसने रख दी।

सामने चूल्हा जल रहा है, धुआं आंखों में लग रहा है, जलन भी है आनंद भी। बस आते ही होंगे, जल्दी से संध्या पूजा हो जाए। जानती है वो क्या कहेंगे।

0: 10 का 20 10 का 20 10 का 20 10 का 20।
1: अरे अरे अब बस 10 से दिल कहाँ भरेगा। मस्ती टॉप 20 लेकर रेणुका जो आने वाली है। टाइम टू रेज द बार। मस्ती टॉप 20 बॉलीवुड चार्ट बस्टर्स ऑफ द वीक फुल ऑन रेणुका स्टाइल। Now, pumping up your Thursday evenings, 5 p.m. onwards, catch the OG rockstar Renuka with the week's top chart busters. The perfect recipe for you to unwind. Musty Weekends only on Radio Musty 24/7 Live.

एक ख्वाब ने आंखें खोली हैं, क्या मोड़ आया है कहानी में। वो भीग रही है बारिश में और आग लगी है पानी में।

0: नमस्कार आदाब सत श्री अकाल गेम जय सिंगापुर सारू जय
1: नो टॉकिंग अलाउड सिर्फ म्यूजिक बोलेगा बैक टू बैक गाने ओनली ऑन मस्ती म्यूजिक कैफे
2: वेयर यू मस्ती 24/7 लाइव अ पार्ट ऑफ मस्ती मीडिया नेटवर्क सिंगापुर
3: चेक इट आउट
4: रात अकेली है
1: तो क्या हम तो

0: बात अकेली है तो क्या, हम तो आपके साथ हैं। जोश में रहो।
1: ये रात तो अपनी है पर एक ख्याल किसका है।
2: तुमको लेकर
1: ये रात हमें इतना प्यार क्यों करती है।
3: मुझे चांद पे ले चलो।
1: सबको सुलाकर हमसे अकेले में बात करती है। बन के रात के हम सफर हर रोज 11 बजे ट्यून इन टू
4: रात अकेली है।
5: जोश में रहो।
4: रात अकेली है।
0: रात अकेली है तो क्या, हम तो आप

यहाँ से कहाँ जाऊँ, कहाँ मैं छुप जाऊँ, ये आधा सा दिल मैं कैसे लगाऊँ, हूँ खुद से जुदा।

0: रात भी बाकी है, मगर अभी रात अकेली है। जोश में रहो।
1: मुझे मत दुआ दे कि मैं बद्दुआ हूँ, नहीं तेरे काबिल कि मैं बेवफा हूँ।

0: Zum zum zum zum. Zum zum zum zum.
1: Zum zum zum zum. Zum zum zum zum.

0: रात अकेली है तो क्या, हम तो आपके साथ हैं। जोश में रहो।
1: Yeah. Wanna feel that?

नए दिन की शुरुआत शांति और श्रद्धा के साथ भक्ति प्रेरणा और सुकून भरे गीत सुनिए रेडियो मस्ती 24/7 पर मस्ती पे भक्ति सुबह 6 बजे।

तुम्हारा अधिकार सिर्फ कर्म करने पर है, उसके फल पर नहीं। फोकस ऑन डूइंग योर ड्यूटी विदाउट बीइंग अटैच्ड टू द रिजल्ट्स।

0: जो दूर तक साथ दे ढूंढे उसी को नयन। आप हमें ढूंढ रहे हैं क्या? गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। आपका दूर तक साथ देने वाला साथी, जी हाँ, रेडियो मसी 24/7 मसी मीडिया नेटवर्क एंड रेणुका ऑन द मॉर्निंग शो एवरी मंडे। भाई मंडे हो ही नहीं सकता अगर रेणुका यहाँ पर नहीं है, राइट? सीरियस हेडलाइंस with a not so serious vibe, only on the morning show on Radio Masti 24/7. मतलब मंडे हो सकता है अगर रेणुका नहीं है, लेकिन मंडे नहीं हो सकता अगर रेडियो मस्ती 24/7 नहीं है, राइट? राइट और एब्सोल्युटली राइट। गुड मॉर्निंग, आइए आइए, स्वागत है आपका। जी हाँ, मंडे है, उठ जाओ, बिल्कुल चलो आगे बढ़ना है इंसान, बहुत कुछ करना है जिंदगी में, बिस्तर छोड़ो आंदोलन राइट नाउ। भाई बिल्कुल, सुबह 7:00 कुछ ही मिनट हुए हैं फिलहाल, लेकिन मैं इतना जानती हूँ कि आपको आगे बढ़ना है और काम वाम पे लगना है। भाई वीकेंड वीकेंड खत्म हो चुका है, तो हमेशा की तरह शुरुआत तो हम करते हैं एक ऐसी बढ़िया सी बात से जो कि आपको पूरे हफ्ते के लिए जोश में भर देता है। एंड दैट बढ़िया सी बात इज दैट टू अकम्प्लिश ग्रेट थिंग्स वी मस्ट नॉट ओनली एक्ट बट ऑल्सो ड्रीम, नॉट ओनली प्लान बट ऑल्सो बिलीव। तो बिल्कुल सही बात है, सिर्फ एक्शन ही जरूरी नहीं है, एक सपना बहुत जरूरी है। अरे वो सपना तो है ही जो हमारे साथ इस टाइम जुड़ी हुई है, लेकिन वो सपना भी जरूरी है जो आंखों में होता है, राइट? और जहां आप देखते हैं कि आप अपनी जिंदगी में आगे पहुंच रहे हैं, चलते चले जा रहे हैं और बिल्कुल खुशहाल जिंदगी बिता रहे हैं। और प्लानिंग भी बहुत जरूरी है, लेकिन साथ में जरूरी है वो विश्वास कि आप अकेले चलेंगे लेकिन बहुत कुछ कर पाएंगे। जी हाँ, और आज का दिन ऐसा ही है। रेडियो मसी 24/7 पर अकेले अकेले चलेंगे हम, अमिताभ बच्चन की आवाज में, जैसे एकला चलो रे। और बिल्कुल अकेले चलते चलते फिर वापस आएंगे, क्योंकि हम चाहते हैं कि हम पूरी पूरी दुनिया की खबरें यहां पर ऑन द मॉर्निंग शो एक दूसरे के साथ में बातें करते हुए अगले 3 घंटे बिताएंगे, राइट? रेडियो मस्ती 24/7। गुड मॉर्निंग एवरीवन एंड वेलकम टू अ ब्रांड न्यू शो, दिस इज द मॉर्निंग शो।
1: Radio Musti 24/7. Download Radio Musti 24/7 app to call us instantly or email, WhatsApp, text us from the app.

0: तो आइए शुरुआत करते हैं अपने शो की, जिसका नाम है द मॉर्निंग शो। और इस मॉर्निंग शो में आप और हम कॉफी पीते हैं, चाय पीते हैं और डिस्कस करते हैं कि ये दुनिया में क्या क्या हो रहा है। राइट, मंडे कॉफी का बेस्ट पार्टनर द मॉर्निंग शो ऑन रेडियो मस्ती 24/7। न्यूज, views and a pinch must be. Prime Minister Lawrence Wong, जी हाँ, आज के दिन में जकार्ता में for the Singapore Indonesia Leaders Retreat, जहां वो और President Prabowo Subianto बात करेंगे, reaffirm करेंगे ties between the two countries. जी हाँ, good morning, the news from Jakarta. ये जो रिट्रीट है, ये एनुअल मीटिंग है सिंगापुर इंडोनेशिया के बीच में, जो कि होस्ट की जाएगी बाय प्रेसिडेंट प्रबोवो एंड द लीडर्स। सेकंड रिट्रीट राइट नाउ, ये कहा प्राइम मिनिस्टर ऑफिस ने, जी हां, कल ही के दिन में। और जो प्रीवियस थी, पिछली वाली थी, दैट वाज हेल्ड इन सिंगापुर इन जून 2025। ये जो लीडर्स रिट्रीट होती है, वो रीफर्म करती है द डीप एंड एंड्योरिंग बायलैटरल टाइज बिटवीन सिंगापुर एंड इंडोनेशिया, एंड साथ ही साथ में कमिटमेंट बाय बोथ गवर्नमेंट्स टू डीपनिंग बायलैटरल कोऑपरेशन। पीएमओ की तरफ से बहुत ही पॉजिटिव मैसेज आते हुए ये भी पता लगा है कि इस मीटिंग पर ये जो दोनों लीडर्स हैं, वो एक्सपेक्टेड हैं टू डिस्कस वेज टू स्ट्रेंथन कोलैबोरेशन इन एरियाज ऑफ म्यूचुअल इंटरेस्ट एंड बेनिफिट फॉर सिंगापुर एंड इंडोनेशिया। पीएमओ ने यहां तक भी कहा कि दे विल रिसीव अपडेट्स ऑन बायलैटरल प्रोजेक्ट्स अंडरटेकन सिंस द लास्ट रिट्रीट। सो पिछले मीटिंग से लेकर अब तक जो कुछ हुआ है, उसके बारे में बात होगी, साथ ही साथ में पर्सपेक्टिव्स एक्सचेंज किए जाएंगे ऑन रीजनल एंड ग्लोबल developments. This retreat comes as Singapore and Indonesia are expanding cooperation beyond traditional areas such as trade, investment and defense into sectors including the green economy, cross-border electricity trade, carbon capture and storage, artificial intelligence and digital connectivity. भाई, मुझे तो बहुत अच्छा लगता है इंडोनेशिया, और मैं बहुत खुश हूँ कि आपस में बहुत ही बढ़िया से bilateral relations की बात हो रही है, strengthening हो रही है। हो सकता है और ज्यादा छुट्टियां भी हमको मिल जाए बाली और बाकी जगहों पर, मजा आ जाए, है ना? देखा हजारों दफा, ओहो, मजा तो ये गाना सुन के भी आएगा।
1: फिर बेकरारी कैसी,
0: बेकरारी है बाकी की न्यूज जानने की। सुनते हैं ये गाने और फिर उसके बाद वापस आके मोर न्यूज कमिंग अप दिस आवर। गुड मॉर्निंग ऑन द मॉर्निंग शो इज रेणुका विद यू।
2: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव, अ पार्ट ऑफ मस्ती मीडिया नेटवर्क सिंगापुर। चेक इट।

0: जब हमारा कोई शो होता है सुपर हिट तो आप कहते हैं और रेडियो मस्ती 24/7 कहता है क्यों नहीं। Presenting the encore of your favorite shows. Another day, another time. For your listening pleasure only. Because super hits deserve a repeat. Check out the encore show schedule on our app menu.
1: Only on Radio Musti 24/7 Live. A part of Musti Media Network Singapore.

0: We are Radio Masti 24/7 live, keeping you connected Bollywood style anywhere, anytime.
1: राइट, नेशनल डे परेड. आप में से कितने लोग ऑलरेडी देख रहे हैं कि यहाँ पर रिहर्सल शुरू हो चुकी हैं? और मैं तो बता सकती हूँ क्योंकि मैं बिल्कुल नेशनल स्टेडियम के पास में रहती हूँ. वेल, आई वाज काइंड ऑफ थिंकिंग, यार ये आजकल रोड ब्लॉक्स क्यों हो रहे हैं हर वीकेंड पर और इतने ज्यादा लोग क्यों आसपास घूम रहे हैं? देन आई रियलाइज, आहा, आई एम वन ऑफ दोज लकी वंस जिसको बहुत दूर जाना नहीं पड़ेगा. लेकिन रोज के रोज, हर वीकेंड के वीकेंड मुझे रिहर्सल्स के बाद के फायरवर्क्स दिख जाएंगे. गुड मॉर्निंग. सुबह का असली वेकअप कॉल, द मॉर्निंग शो विद रेडियो मस्ती 24/7. यू नो, सबसे ज्यादा एक्साइटमेंट ऑफ नेशनल डे परेड और उससे कई हफ्ते पहले मुझे क्या होती है, जब मैं हवा में उड़ता हुआ वो हेलीकॉप्टर्स के साथ में नेशनल फ्लैग देखती हूँ. राइट, और उस नेशनल फ्लैग को देखने के मजे ही अलग होते हैं. मतलब मुझे लगता है ओ यस, इट्स दैट टाइम ऑफ द ईयर. सो भाई, अब पहली बार कालांग बेसिन, जी हाँ, लेफ्टिनेंट तान याओ बिन बड़े ही ज्यादा खुश हैं. और मैं उनकी बात इसलिए कर रही हूँ बिकॉज 950 फीट अबव द ग्राउंड वो चला रहे हैं वो हेलीकॉप्टर, जहां पर लोग पिकनिक कर रहे हैं मरीना बराज पे. रेजिडेंट्स आर जॉगिंग अलोंग द सिंगापुर रिवर एंड दैट्स हाउ द मरीना बे स्काईलाइन रियली लुक्स सो अमेजिंगली ब्यूटिफुल. राइट, तो भाई उन्होंने साथ में वन ऑफ द टू हेलीकॉप्टर्स जो वो ऑफकोर्स एस्कॉर्ट कर रहे हैं टू कैरी द सिंगापुर फ्लैग. बात हो रही थी कि कितने लोग इन्वॉल्व होते हैं ये सिंगापुर फ्लैग जो हमें एंड में दिखता है उसको वहां तक पहुंचाने में. वेल, सो इसमें होते हैं अप्रोक्सीमेटली 90 पीपल, जी हाँ 90 लोग. एंड दिस स्टेट फ्लैग इज 30 meters by 20 meters वाइड. आप सोच सकते हैं इट इज लार्जर देन द साइज ऑफ 2 टेनिस कोर्ट्स. और 320 किलो का होता है ये वाला झंडा हमारा, जो कि हम बड़ी आसानी से एक फोटो खींच के अपने सोशल मीडिया पर डाल के कहते हैं यस हाउ ब्यूटीफुल इज दैट. लेकिन सोचिए इसके पीछे का काम, सोचिए व्हेन इट इज अटैच्ड विद द बैलास्ट्स एंड द केबल्स तो इसका पूरा वेट आ जाता है 1360 किलोग्राम्स. और ऐसे 15 झंडे, जी हाँ, दे आर डिप्लॉयड टू 3 डिफरेंट साइट्स. So let's all gear up, guys. NDP is around the corner. National Day is around the corner. अगर आप हार्टलैंड्स पे इधर उधर कहीं भी कुछ भी देख रहे हैं, then come on, share those pictures with us. We'd love to know how you are feeling the sense of belongingness as we approach August 9th. And a very good morning. छोटा सा break यहाँ पर. Coming back with some Bollywood news this time. Stay tuned. This is Renuka with you, Radio Masti 24/7.

0: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर मैं हूँ अंतरा आपके साथ,
1: मैं आरजे पर मस्ती मॉर्निंग शो पर आपके साथ।
2: लीजिए समर आ गया है लेकर यादों का कारवां।
3: आपने इनकी आवाज तो सुनी है, अब क्या आप अपनी आवाज अपने ही शो के जरिए हमारे लाखों लिसनर्स तक पहुँचाना चाहेंगे? स्टेज फियर को भगाना हो या पैशन को आगे बढ़ाना हो, इट्स इम्पोर्टेंट टू स्टार्ट विद द राइट ट्रेनिंग। The RJ Academy at Masti Media Network is now open for you. That too with a hybrid model for your convenience. 12 hours training per level, flexible individual focused syllabus offered for 14 years old and above. Selected trained voices to get an opportunity to host live on Radio Masti 24/7. Email a brief intro to info@radiomasti.com.sg requesting for an application form.

0: एन ऑन रेडियो मसी 24/7 गाइस, आई डोंट वांट टू टॉक अबाउट क्या चल रहा है बॉलीवुड में आजकल, फिल्मों ये वो का रिव्यू नहीं दे रही हूँ, मैं एक पर्सनल बात शेयर करना चाहती हूँ, मेरा टाइम किस तरह से बर्बाद हुआ है पिछले दो दिनों में, वेल उसके बारे में बात कर लें थोड़ा सा, कहीं तो जाके निकालूंगी ना यार। गुड मॉर्निंग एंड वेलकम
1: मंडे कॉफी का बेस्ट पार्टनर द मॉर्निंग शो ऑन रेडियो मस्ती 24/7 न्यूज व्यूज एंड अ पिंच मस्ती।
0: यार मैंने सोचा था नीतू सिंह, जी हाँ, लॉन्च रीलॉन्च एंड फाइनली लॉन्च एंड दादी की शादी। I'm not sure if you guys have really watched that film, लेकिन Netflix ने इसको जब release किया तो मुझे लगा चलो यार let me kill some time without using my brains, right? So दादी की शादी काफ़ी emotionally heavy filmी और family drama बनाने की कोशिश करी है, ठीक है, जिसके अंदर नीतू कपूर जो है neglected grandmother हैं and of course Facebook post कुछ गलती से डाल देती हैं वो, जिससे कि उनके सारे खानदान को लगता है कि वो शादी कर रही हैं and then everybody comes and visits. So it's sort of melodramatic warning about neglecting elderly parents, ठीक है, और वो modern day बागबान कह लीजिए उस तरह की फिल्म है। बट मुझे सबसे ज़्यादा ये लगा कि यार एक्टिंग किसी को भी नहीं आती, मतलब कोई भी नहीं। मुझे एक तो ये बात आज तक समझ में नहीं आई कि कपिल शर्मा why doesn't he continue to do what he's supposed to be good at, right? Which is his comedy. तो फिर छोड़ दो यार, why does he insist time and again कि नहीं भैया मुझे तो जाना ही है फिल्मों में। And then उससे भी ज़्यादा the acting debut of Ridhima Kapoor Sahni. क्यों, क्या ज़रूरत है आपको इस स्टेज ऑफ लाइफ पे जहाँ पर आपको बिल्कुल एक्टिंग नहीं आती है टू फोर्स योर सेल्फ इन अ फिल्म, रियली यू हैव बीन सो ब्यूटिफुली एलिगेंट, जस्ट स्टे वेयर यू आर। लेकिन नहीं, हर किसी को घुसना है इस फिल्म में, क्योंकि अब वो जो डैडी बड़े स्ट्रिक्ट वाले थे ऋषि कपूर जी, अब नहीं रहे इस दुनिया में, तो भाई सबको लगा अब मैं वो सब कर लूँ जो मेरा मन है, नथिंग रॉन्ग इन दैट, लेकिन प्लीज यार हमारा तो बुद्धू मत बनाओ, हमारा भी टाइम बहुत प्रेशियस है नहीं। चलिए सुनते हैं वाला गाना, आई थिंक आई जस्ट नीडेड टू गेट दैट आउट ऑफ माई सिस्टम। गुड मॉर्निंग एवरीवन, आपने देखी है, देखी तो प्लीज शेयर योर व्यूज ना मेरे साथ 9151896 3। थैंक यू।

0: जापान में रोती हुई औरतों को मिलते हैं हैंडसम हग करने वाले बॉयज।
1: वाओ, हमारे यहाँ तो बस बेटा रो मत ये मिलता है। यहाँ मिलते हैं दो करारे थप्पड़। This is Musti Madness on Radio Musti 24/7.
2: Download Radio Musti 24/7 app to call us instantly or email, WhatsApp, text us from the app. Josh mein raho.
3: They were not chosen. They were created.
4: Uski maa ka naam Janaki tha. Hum ise Sita bulaenge.
5: Alpha.
6: The newest chapter in the YRF spy universe.
7: पर इस बार सीता आज लंका खुद जलाने आई।
6: आलिया भट्ट एंड शर्वरी इन इंडियाज फर्स्ट फीमेल लेड एक्शन स्पेक्टिकल वेयर एवरी डिसीजन कुड बी देयर लास्ट।
8: अल्फा प्रोग्राम उसका जुनून है और जो भी उसके रास्ते में आता है वो उसे मार देता है।
6: बोर्न टू फाइट बिल्ट टू सर्वाइव। अल्फा रिलीजिंग 3rd जुलाई आइलैंड वाइड एट द सिनेमास नियर यू। ब्रॉट टू यू बाय होम स्क्रीन एंटरटेनमेंट।

0: your passport to the world every Monday morning, from global headlines to a pinch of Bollywood spice. The Morning Show with Renuka, 7 a.m. Mondays.
1: Only on Radio Musti 24/7 Live, a part of Musti Media Network Singapore.
2: Check it out. Josh Mehra.
3: और हमारे दूसरे घंटे में आपका स्वागत. जी हाँ, चल रहा है सुबह 7 बजे से द मॉर्निंग शो, जहां पर आसान तरीके से सारी दुनिया की खबरें आपके लिए यहां पर लाई जाती हैं. सुबह का असली वेक अप कॉल, द मॉर्निंग शो विद रेडियो मस्ती 24/7. तो चलिए सुबह का असली वेक अप कॉल से शुरुआत करते हैं कि जापान बिल्कुल तैयार है इस समय टू टेस्ट द यूज ऑफ ड्राइवरलेस पब्लिक बसेस, एंड दैट इज फ्रॉम 2027. ऐसा कहा जापान के इकोनॉमी, ट्रेड एंड इंडस्ट्री मिनिस्ट्री ने. वेल, रिमोट मॉनिटरिंग सिस्टम, उसको इंट्रोड्यूस किया जाएगा टू ऑल द बसेस टू ऑटोमेट बोथ ड्राइविंग एंड पैसेंजर असिस्टेंस. ये कॉरेस्पॉन्ड करता है टू लेवल 4 ऑन द ऑटोनोमस ड्राइविंग क्लासिफिकेशन सिस्टम, मतलब कि ह्यूमन इंटरवेंशन की जरूरत नहीं है अंडर सर्टन कंडीशंस. देर आर 5 लेवल्स ऑफ ऑटोमेशन ड्राइविंग, आपको मैं बताना चाहूंगी, रेंजिंग फ्रॉम लेवल 0 जहां पर नो ऑटोमेशन इज यूज्ड, टू लेवल 5 जहां पर एक जो गाड़ी होती है ऑपरेट करती है कंप्लीटली ऑटोनोमसली. बस ऑपरेटर्स हैं, कमर्शियल व्हीकल मेकर्स हैं या रिमोट मॉनिटरिंग सिस्टम डेवलपर्स हैं, सभी अप्लाई कर पाएंगे टू पार्टिसिपेट इन द ट्रायल अंटिल जुलाई 29. लेवल 4 टेस्ट जो होते हैं, दे हैव ऑलरेडी बीन कंडक्टेड इन जापान, बट ओनली अ स्मॉल व्हीकल्स और विद अ ड्राइवर ऑन बोर्ड. लेकिन ड्राइवरलेस बसेस, नए सिस्टम्स, ये चीजें काफी बड़ी है, एकदम हाई लेवल की.